अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 47 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12

0: 50 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना

कार्यक्रम का आरंभ भारत माता की वंदना के साथ। भारत एक ऐसे भौगोलिक भूभाग का नाम है जहां देश के लिए अपने तन को समर्पित करने वाले वीरों की गाथाएं कदम कदम पर सुनी और कही जाती हैं। इन वीरों का शौर्य, साहस और पराक्रम हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे सपूतों की जननी हमारी मातृभूमि को बारंबार प्रणाम।

मातृवंदना के बाद नमन उस परम शक्ति को जिसके स्मरण मात्र से निराशा रूपी अंधकार में आशा की एक किरण प्रस्फुटित हो जाती है और तब हमारा मन स्वीकार करने लगता है उस असीम शक्ति को, उस परम प्रकाश को जो हमारे हृदय के अंधकार को एक क्षण में दूर कर सकता है।

कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। परमात्मा का एक नाम ही जन्म जन्म की आराधना के लिए पर्याप्त है, क्योंकि भक्त की आस्था के वशीभूत होकर ये समस्त संसार उसके एक नाम में ही समाहित हो जाता है और मुक्ति द्वार बन जाता है हमारी जन्म जन्मांतर की यात्रा का।

प्रेम ही परमात्मा की दी हुई वो शक्ति है जो प्राणी मात्र को उस परम शक्ति से जोड़ सकती है। अपने हृदय में समाये प्रेम को उदारता, करुणा और क्षमा के रूप में प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्रेम के यही स्वरूप, प्रेम की यही विशालता ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई वर्तमान जीवन यात्रा को सुंदर बनाती है, संपूर्ण बनाती है।

रोम रोम में ईश्वर के प्रति आस्था समाहित होने का अर्थ है हमारे हृदय का पूर्णतः पवित्र हो जाना, और फिर हमारा यही हृदय शरीर की प्रत्येक इंद्रिय तक ईश्वरीय शक्ति का संचार करता है।

आज की वंदना में आपने समूह स्वर के अलावा नीलम साहिनी, शर्मा बंधु और पामेला सिंह की गायी रचनाएं सुनी। अब आज की वंदना संपन्न होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायन स्वर ए हरिहरन व साथियों का है और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग,

पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

0: श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति अभी आपने सुनी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है प्रार्थना। आलेख वसंत निर्गुणी का है।
1: महात्मा गांधी ने प्रार्थना को मन की खुराक कहा है। आखिर प्रार्थना क्या है? गांधी ने प्रार्थना को मन की खुराक क्यों कहा है? क्या प्रार्थना से मन प्रसन्न होता है? क्या प्रार्थना मन की चीज है? पर मन तो बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। फिर प्रार्थना में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मन को एकाग्र करती है और मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है? गांधी जी तो नियमित रूप से पूरी जिंदगी सुबह शाम प्रार्थना में रहे, यहां तक कि वे अकेले ही नहीं, संगी साथियों सबको प्रार्थना में शामिल करते थे। आश्चर्यजनक संयोग उनके साथ ये रहा कि उनको प्रार्थना से लौटते समय सीने पर गोलियां लगीं।

0: और हे राम की प्रार्थना में ही उनका प्राणोत्सर्ग हुआ। बापू प्रार्थना के बल पर अमर हो गए। उनके सीने की गोलियां भी जैसे हर एक मन की प्रार्थना बन गई, जैसे ईसा मसीही के शरीर में ठोंकी गई कीलें और कांटों का ताज सारी विश्व मानवता की करुणा की प्रार्थना बन गई थी। प्रार्थना निश्चित रूप से करुणा का विवल रूप है। वास्तव में प्रार्थना अपने आप में बहुत पवित्र वस्तु है। इतनी पवित्र वस्तु है कि वहां अहंकार और दोहरापन टिक ही नहीं पाता। प्रार्थना में एक तरह का तादात्म्य होता है, अपने भीतर का, अपनी आत्मा का, जहां आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। शरीर आत्मा और परम आत्मा का एकाकार हो जाता है, तब जो शब्द फूटते हैं वही प्रार्थना बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में सामने ना होते हुए भी प्रार्थना के एक एक तरल शब्द भक्त के लिए भगवान हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। मीरा हमेशा अपने इष्ट देवता की प्रार्थना में गाया करती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सूरदास नित्य बाल कृष्ण को अपने पद सुनाया करते थे। कबीर तुलसी रैदास सबके सब अपनी आत्मा की प्रार्थना में थे, इसलिए उनकी एक एक रचना प्रार्थना बन गई, जिन्हें हम जैसे संसारी भी गाकर धन्यता महसूस करते हैं, एक पवित्रता का एहसास करते हैं, एकात्मता की प्राप्ति की ओर जाते हैं। मन आत्मा का बाहरी आवरण है। प्रार्थना मन को समेटकर आत्मा में निवेशित करती है। ध्यान योग प्रार्थना के क्रियात्मक रूप हैं। ये सब मन के सातों संस्तरों को भेद कर आत्मा में स्थित करने के प्रयोग हैं, जिसे योग साधना का नाम दिया है। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रार्थना प्रयोग नहीं है। योग साधना से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, परंतु प्रार्थना सिद्धि नहीं है। वो तो आत्मा का आनंद है, मन की मौज है, विह्वलता है। चैतन्य महाप्रभु मन की मौज में, विह्वलता में नाचते थे, संकीर्तन करते थे। वे सदैव मन के वृंदावन में कृष्ण की प्रार्थना में लीन थे। प्रार्थना को जीवन में इतनी बड़ी कर लो कि वही भक्ति बन जाए, तब भक्त के लिए भगवान स्वयं चले आते हैं। नरसिंह मेहता ने अपनी प्रार्थना के साथ यही किया था। प्रार्थना जब ताकत बन जाती है, तब दुनिया की सारी ताकतें उसके अधीन हो जाती हैं। गांधी की प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी हो गई थी कि जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, वे अंग्रेज हाड़ मांस के कहे जाने वाले पुतले के सामने ढेर हो चुके थे। ये शक्ति गांधी ने अपने भीतर प्रार्थना से ही अर्जित की थी। प्रार्थना का एक अर्थ निवेदन भी है। जब किसी बड़े व्यक्ति को कुछ भले कार्य करने के लिए कहा जाता है, तब उससे प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना में निवेदन के साथ समस्त मानवता की विनयशीलता भी सन्निहित होती है। गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ इसी प्रकार की प्रार्थना का रूप था।
1: अभी आपने सुना चिंतन, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इसके अंतर्गत डॉक्टर राजकिशोर भटनागर से जानिए खरीफ फसलों हेतु खेत की तैयारी एवं पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में।
2: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे खरीफ फसलों हेतु खेत की तैयारी एवं पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि खरीफ फसल में जो खेत की तैयारी ही सबसे प्रमुख और सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास। खेत की तैयारी के लिए आप सबसे पहले खेत को अच्छे से 2 बार आड़े में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में बखर लें, और जिन किसान भाइयों के पास साधन उपलब्ध हैं वो किसान भाई पहले ही रवि में, जैसे ही कटाई होती है उससे पहले ही आप होते ही तुरंत आप प्लाऊ कर दें, जिससे जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और आपके कीट व्याधि और जो रोग हैं और जो खरपतवार

0: के बीज हैं ये सब सड़ के गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। और खरीफ ऋतु है उसमें आप भूमि बहुत एकदम भुरभुरी और एकदम मखमली भूमि फसल के लिए तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसमें आपको बताना चाहूँगा, तो जो आपने दो बार अच्छे से आड़े में बखरनी किया है उस समय यदि आपके पास संभव हो तो आप उसमें लगभग 10 से 15 कुंटल अच्छी सड़ी गोबर खाद यदि हो तो आप मिला लें, यदि वर्मी कंपोस्ट हो तो उसको मिला दें। ये सारी प्रक्रिया आप 10 से 15 दिन बोनी के पूर्व में ही कर लें। और आप जो भी फसल लेने वाले हों, यदि आपकी फसल में दीमक की समस्या है तो आप पहले से ही लगभग 20 से 22 किलो या 25 किलो तक क्लोरोपाइरीफॉस प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अंतिम बखरनी के समय या जब आड़े में आप बखरनी कर रहे हैं तो उस समय मिलाकर अच्छे से आप उसमें मिला दें। इससे आपकी दीमक की समस्या आगामी एक ऋतु के लिए पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि खास तौर से कुछ फसलों में ये समस्याएँ आती हैं। पोषक तत्व में जैसा एक नियम है कि फॉस्फोरस और पोटास आमतौर पर प्रारंभ में ही आप सभी डाल दें और उसको बखरनी के समय अच्छे से मिला दें। जहाँ तक रही नत्रजन की बात, नत्रजन की पूर्ति यदि आपके पास दलहनी फसलें हैं या तेल वाली हो या जिस किसी भी तरह की, जो अगर दलहनी फसल है और जड़ंथी वाली फसल है तो आपको नत्रजन की ज़रूरत उसमें ज़्यादा नहीं है। बस आप उसमें नत्रजन प्रारंभिक 20 से 25 दिन के लिए 20 से 25 किलो नत्रजन जरूर दे दें। इसके अलावा एक निवेदन है कि आप उसमें स्फुर घोलक जो जीवाणु है PSB जिसको बोलते हैं 5 ग्राम प्रति किलो बीज दर के हिसाब से आप जो बीजोपचार है उस समय जरूर मिला दें। 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा जरूर मिला दें प्रति किलो बीज दर के हिसाब से। और उसके बाद आप जो भी आपकी फसल है उसका जो राइजोबियम या उसका जो कल्चर है वो ज़रूर आप उसमें मिक्स कर दें। और ये मिक्स करने का ये जो पद्धति है FIR तकनीक के माध्यम से ही करें। सबसे पहले आप किसी भी तरह का जो बीजोपचार है वो थायरम कार्बेनाजिम या जो भी आपको बीजोपचार करना है आप उसको पहले मिक्स कर दें, उसके बाद ठंडे में सुखा लें। फिर जब आप उसमें यदि आपको कोई इंसेक्टिसाइड डालना है किसी कीट से बचाना है जैसे दीमक वगैरह, तो क्लोरोपाइरीफॉस 4 से 5 ml प्रति किलो बीज दर से उपचारित कर दें, फिर से वही प्रक्रिया करें, फिर से ठंडे में सुखाएँ और सबसे अंत में गुड़ के घोल के फिर से उस पर डालकर और कल्चर को उसमें अच्छे से मिला दें और मिलाकर छाया में सुखाकर तत्काल 2 घंटे के अंदर बोनी कर दें। उस बीज को ज़्यादा देर आपको रखना नहीं है। तो ये तो हुई आपकी खेत की तैयारी और बीज की बात। अब पोषक तत्व की बात जो है, पोषक तत्व में जैसे अब धान है तो धान में आप चूँकि आप 40 से 50 किलो लगभग आप सीधे धान की बुआई कर रहे हैं बीज, तो इसमें आपको लगभग अगर यदि आपके पास देसी किस्म है धान की तो आप लगभग 80 किलो नत्रजन और 60-60 किलो स्फुर पोटास आप डाल देंगे। और यदि आपके पास अच्छी बासमती या अच्छी संकर किस्म है धान की तो 100 से 120 किलो आप नत्रजन की पूर्ति उसमें ज़रूर करेंगे और बाकी 60-60 किलो स्फुर पोटास तो आप पहले ही मिक्स कर चुके हैं। लेकिन जो ये 100 से 120 ये जो नत्रजन है, ये नत्रजन की पूर्ति कम से कम 3 भागों में आपको ज़रूर करनी है। पहला, बिल्कुल आपके बोनी या जो शुरुआत की अवस्था होती है 4 पत्ती की अवस्था उसी समय, दूसरा आपको किल्ले निकलते समय, और तीसरा जब उसका पुष्प गुच्छ निकलता है उस समय। और जैसे ही पानी आप सफिशेंट उसमें डाल दें, लगभग जब पौध उसकी स्थापित हो जाए तो आप उसमें एजोला भी डाल दें। इसी तरह सोयाबीन में, सोयाबीन भी चूंकि अब दलहनी फसल है, मैंने अभी पहले आपको धान चूंकि धान्य फसल थी इसलिए नत्रजन ज़्यादा लग रही थी, लेकिन सोयाबीन में ज़्यादा नत्रजन नहीं लगती है। इसी तरह जो तुअर है उसमें भी आपको बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। तो किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न होती है।
1: अभी आपने डॉक्टर राजकिशोर भटनागर से जाना खरीफ फसलों हेतु खेत की तैयारी एवं पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। इसके साथ ही आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें। मन की बात

0: फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत्, फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञभावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिन्द। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयणसङ्कल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्यसमर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,00,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,07,44,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये 10वें संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से

पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेक और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर डॉक्टर निपुण माधव से की गई चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना की जानकारी आयुक्त नवीन वैद्य से। और इसी कार्यक्रम में सुनिएगा गर्भावस्था में योग के महत्व पर डॉक्टर साधना डोनेरिया से की गई बातचीत। आज का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल प्रस्तुत करेंगी शिखा जैन। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। गांधी चर्चा सुनिएगा प्रातः 9:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 9:30 पर और प्रातः 10:05 पर। जिले की चिट्ठी का समय होगा प्रातः 10:00। प्रातः 10:15 पर आप सुनेंगे जनसंपर्क संचार

चालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संबोधन का सीधा प्रसारण। समय याद रखिएगा, प्रातः 10:15। और शाम 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब जानिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पूर्वाहन 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा दिन के 12:00 और दोपहर 2:30। संग्रहालय से के अंतर्गत दिन के 12:30 पर सुनिएगा धारावाहिक भुवन मोहिनी की पहली कड़ी। महिला कार्यक्रम दिन के 1:00, लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दिन के 1:45 पर। आज के ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति हैं। शाम 5:10 से आप सुनेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। कार्यक्रम खेल जगत आप सुनेंगे रात 9:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा फीफा वर्ल्ड कप में टीमों का प्रदर्शन, इस विषय पर वार्ताकार होंगे आलोक कुमार चतुर्वेदी। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, इसके अंतर्गत सुनिएगा सारंग फगरे का राग बागेश्वरी में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिकल सेल एनीमिया के विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश प्रवास के दूसरे दिन आज जन स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण को समर्पित रहेगा। राष्ट्रपति खंडवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आज अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। पेश है संवाददाता हीरालाल लोंगरे की एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज ओमकारेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावी

0: नियंत्रण के उद्देश्य से किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अपने संबोधन में सिकल सेल रोग की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार और जन जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालेगी। साथ ही जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य संरक्षण और उनके समग्र विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संदेश देंगी।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बैतूल में आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना भी की, जबकि यात्रा के अगले चरण में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गाँव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। वे 22 जून को कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में भी सफलता प्राप्त की है। पिछले 12 सालों में भारत में हुए विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: कोलकाता का मशहूर रेड रोड 21 जून को 12वें राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। उत्सव के उपलक्ष्य में कल 12 विशेष डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता में भव्य ड्रोन शो के साथ हुगली नदी पर 500 नावों में सामूहिक योग का अनूठा प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह आयोजन भारत के शाश्वत ज्ञान का वैश्विक आंदोलन है। इस वर्ष दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में भी तैयारियां जोरों पर हैं। नीमच के लायन डेन में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां सुबह 6:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोलो ग्राउंड और डिंडोरी जिले के शिक्षण संस्थानों में व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योगाभ्यास की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस किस्त के साथ फरवरी 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत कुल वितरित धनराशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पीएम किसान उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास में कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों और अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय की भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमें नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर प्रदेश को ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सशक्त केंद्र बनाना होगा। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास और आवास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संजय दुबे, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एम सेल्वेंद्रम और मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी भी उपस्थित रहे। बात खेल की। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में

ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। उरुग्वे की चियारा एपेमनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव के बीच लोग मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिले में कल बारिश के बाद आज मौसम विभाग ने राजगढ़ और अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कल पुरानी कृषि मंडी में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में आगामी पीढ़ियों के स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की। गुना जिला कलेक्ट्रेट में गुलाब की उन्नत खेती और पॉली हाउस प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर चालू वित्तीय वर्ष में 100 एकड़ नवीन पॉली हाउस का लक्ष्य रखा गया। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए जिले के 32 केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं की कल समीक्षा की। ग्वालियर जिले में 27वें वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में शहीद सुखदेव के वंशज अनुज थापर और शहीद अनूप कुमार के माता पिता को उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सम्मानित किया। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल बैठक लेकर भारत पशुधन पोर्टल पर पशुपालकों के आधार अपडेट और टीकाकरण प्रविष्टियां 20 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। भोपाल नगर निगम द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु 84 जल नमूनों की जांच की गई और पाइपलाइनों के 35 लीकेज सुधारे गए। पन्ना जिला पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में छत्तीसगढ़ से परमेश्वर कंवर को गिरफ्तार कर पीड़ित के बैंक खाते से ठगी के 2,47,000 रुपये फ्रीज किए। नीमच जिले में शासन आपके द्वार अभियान के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित सभी जिला अधिकारी टीम भावना का संदेश देते हुए बस से ग्राम कंजारडा चौपाल पहुंचे। और जबलपुर जिले के बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच अंतिम चरण में है। जस्टिस संजय द्विवेदी आयोग के समक्ष शिकायतकर्ताओं ने स्वतंत्र तकनीकी जांच न होने पर सवाल उठाए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिकल सेल एनीमिया के विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वीकारें शिखा जैन का प्यार भरा अभिवादन आज के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम के अंक में।

दोस्तों कहते हैं दुआओं का कोई शोर नहीं होता, ये चुपचाप चलती हैं और रास्तों को रोशन करती चली जाती हैं। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज के सफर में। दोस्तों बचपन

से ही हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें पैसों का महत्व समझाया। हम ज़रूरतें पूरी करें पर फिजूल खर्चों से बचें, इस बात की भरपूर शिक्षा हमें दी जाती रही है और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये संस्कार अपने बच्चों को भी देकर जाएं। दोस्तों, ये बात हुई पैसों की, पर एक संस्कार और भी है जो हमें या तो अपने पेरेंट्स से या इस प्रकृति से प्राप्त हुआ है, और वो संस्कार है सत्कर्मों का संस्कार। इस दुनिया में याद पैसा कमाने वालों को नहीं बल्कि अच्छे काम करने वालों को किया जाता है। पैसा आपको जीवन में कितनी संतुष्टि देगा ये तो हम नहीं जानते, पर आपके अच्छे कर्म और उनकी दुआएं आपको जीवन भर खुशी देती रहेंगी। पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भी आपको हॉस्पिटल के बाहर लोग खाना खिलाते हुए नजर आएंगे। कोई गो सेवा तो कोई मानव सेवा में लगा हुआ है, कोई बर्तन बैंक तो कोई टाइम बैंक का संचालन कर रहा है, किसी ने वृक्षारोपण को ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। शायद ये सभी लोग ये समझ चुके हैं कि एक कर्मों की गुल्लक भी है जिसका हिसाब सिर्फ ऊपर वाला ही रखता है। दोस्तों, आप इनमें से किसी एक सोशल अभियान से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं जुड़े हैं तो मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए किसी न किसी एक खास उद्देश्य से ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी कीजिए ज़िंदगी में जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो।

रंग बदलता मौसम हो या दस्तक देते मानसून का हाल, सब कुछ लेकर आता है नमस्कार भोपाल। तो आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के रंगों को। आज हम आपको जानकारी देंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना की। बात होगी विश्व सिकल सेल एनीमिया डे पर और साथ ही साथ जानेंगे गर्भावस्था में योग के महत्व को। पर फिलहाल कार्यक्रम में वक्त समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का।

0: सबसे पहली खबर में मध्य प्रदेश में 39% कम बारिश, भोपाल में 94% ज़्यादा। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले हुई बारिश का वितरण बेहद असमान नज़र आ रहा है। 1 से 18 जून के बीच प्रदेश में औसतन 28.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर 46.8 mm बारिश होनी चाहिए थी। यानी प्रदेश अब भी 39% वर्षा घाटी से जूझ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि 52 में से 22 जिलों में सामान्य 50% या उससे अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई है। वहीं अलीराजपुर जिला ऐसा रहा है जहां इस अवधि में एक बूंद बारिश तक दर्ज नहीं हुई है। वहीं अगली खबर में भोपाल में बनेगी गिफ्ट सिटी। उज्जैन में 400 करोड़ रुपए का डीप टेक रिसर्च पार्क। गुजरात की तर्ज पर अब भोपाल में भी गिफ्ट सिटी विकसित की जाएगी। इसे इकाई सिटी एजुकेशन नॉलेज एंड IAI सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की फंडिंग मिलने की संभावना है। वहीं उज्जैन में 400 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डीप टेक रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। और शिक्षकों को दी जा रही है कानूनी जानकारी ताकि वे स्कूली बच्चों को साइबर ठगी, ऑनलाइन अपराध से बचने के तरीके सिखाएं। साइबर ठगी, ऑनलाइन अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा जैसे मामलों में शिकायत कैसे और कहां दर्ज कराई जाए, इसकी जानकारी अब स्कूली स्तर पर ही दी जाएगी। नई पीढ़ी को कानून, अधिकारों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने सृजन संवाद पहल शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के 55 जिलों के 300 से अधिक शिक्षक, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को बौहरी पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित किया गया। और जनजातीय संग्रहालय में 21 को संगीत संध्या। राजधानी के जनजातीय संग्रहालय में 21 जून को संगीत संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा। इस संध्या में भरतनाट्यम में स्मिता महाजन और उनकी टीम रहेंगी। वो वहीं शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित दक्ष शामिल हो रही हैं। यह आयोजन विश्व योग और संगीत दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक विभाग के जरिए कराया जा रहा है। और 8वीं मानसून मैराथन 26 जुलाई को। पचमढ़ी मानसून मैराथन का 8वां संस्करण 26 जुलाई को होगा। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इस मैराथन में 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की 4 श्रेणियां हैं। प्रतिभागियों की संख्या 1500 तय की गई है। और अंत में इसी माह से ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 7 करोड़ से अधिक खाता धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। श्रम मंत्रालय के अनुसार जून के अंत तक ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है जिसके तहत कर्मचारी अपने PF खाते में जमा राशि को UPI और ATM के जरिए निकाल सकेंगे। समाचार पत्रों से फिलहाल इतना ही, पर कार्यक्रम में जानकारी, मुलाकातों और मनोरंजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।
1: मैं हूं पूर्ण चंद वडाली।
2: मैं हूं प्यारे लाल वडाली।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार।

0: आपने अपने रेडियो साइट मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, आज का दिन विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होने जा रही हैं। वे सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम के तहत इस विशेष आयोजन में भाग लेंगी। आइए इस दिन के महत्व को समझते हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निपुण माधव से।
1: बेसिकली जो सिकल सेल एनीमिया है उसके नाम में इसमें सिकल सेल यानी कि हाशिए शेप के रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, पर उनमें जो ग्लोबिन चेन्स होती है उनमें जो वेरिएशन होता है उसके कारण ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइंग डिजीज है, जेनेटिकली चलता है। और इसमें जो आरबीसीज है वो अपना शेप चेंज कर देते हैं जब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है या बहुत ज्यादा ठंड

0: लगती है, तो उस टाइम पे जो हमारे सिकल सेल जो अमूमन गोलाकार शेप के होते हैं वो अपना सेल चेंज करके आधे मून के हिसाब से हो जाता है, और वो जब भी हमारी धामनियों से हमारी आर्टरीज या वेन से निकलते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करते हुए जाते हैं, क्योंकि उनके दोनों एंड पॉइंटेड हो जाते हैं और वो पूरी बॉडी में जहां जहां घूमेंगे और उनमें नुकसान करेंगे और बॉडी तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट की तिल्ली बढ़ने के चांसेस, जॉइंट पेन्स, ये सब हम अपने पेशेंट्स पे देखते हैं। लंबे समय तक अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उनको हिप जॉइंट पेन, जॉइंट पेन्स, बॉडी के कोई से भी जॉइंट पेन, स्प्लीनोमेगली जिसको तिल्ली बढ़ना कहते हैं, वो उनको सिम्टम्स होने लग जाते हैं, प्लस अनीमिया उनका जो HB है वो फॉल होने लग जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइमरी तौर पे अगर किसी बच्चे में हमें ये जांचना हो कि या ये पता करना हो कि इसको सिकल सेल एनीमिया है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे उसमें?
0: देखिए, बच्चों में तो ये लक्षण सबसे पहले ये आ जाएगा कि वो उसकी सांस फूल रही है, वो कहेगा मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है। जब हम एक CBC जो टेस्ट कराएंगे उसमें हमें पता चल जाएगा, और उससे हीमोग्लोबिन कम है और उसके बाकी के पैरामीटर देखने से समझ में आ जाता है कि ये किस तरफ जाए, क्या ये सिकल सेल है, आयरन डिफिशियंसी है, कोई और टाइप का एनीमिया है। वो
1: बॉडी की कितनी परसेंट रेड सेल्स जो है वो सिकल सेल में कन्वर्टेड होती हैं या फिर सारी ही हो जाती हैं?
0: नहीं, पूरी नहीं होती हैं, उनमें कुछ कुछ पार्ट जो भी हाइपोक्सिया या डिहाइड्रेशन की तरफ एक्सपोज होता है, जितना पार्ट बॉडी का एक्सपोज होने लगता है तो उस जगह की RBCs हैं वो चेंज होने लगते हैं, वो अपने शेप चेंज करने लग जाती हैं, और वो एक टाइप से वो पीलिया होना शुरू हो जाता है, दिखने लग जाता है। और ये जो सिकल सेल जो मैंने अभी बताया वो आपके बोन मैरो में भी चेंजेस लेकर आता है, जिसके कारण उनको जॉइंट पेन्स होने लग जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक डिजीज है या फिर बाहर से अर्जित की हुई बीमारी है कोई?
0: ये जेनेटिकली डिजीज है, ये माता पिता से ही आगे बच्चों में आती है। इसका सिर्फ जो रोकथाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक टेस्ट है, सिकलिंग टेस्ट जिसको कहते हैं, उससे हमको पता चल जाता है ये।
1: मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर आने वाली कोई भी जनरेशन इस बीमारी से ना गुजरे तो जाहिर सी बात है कि हमें मतलब शादी से पहले ये टेस्ट जरूर कराना होगा या कराना चाहिए?
0: बिल्कुल, शादी के पहले ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और सिकलिंग टेस्ट। बहुत ही सस्ते हो चुके हैं अब, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें बहुत कुछ काम कर रही है, हमारे गवर्नर, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस सिकल सेल को एलिमिनेट करने के लिए बहुत अपने कदम उन्होंने उठाए हैं, और इंटरनेशनली उन्होंने, क्योंकि 2047 तक हमको सिकल सेल एलिमिनेट करना है इंडिया से।
1: ये सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम भी जो चलाया जाता है, ये किस तरह का प्रोग्राम है, इसमें किस तरह की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है?
0: सिकल सेल जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसमें बेसिकली टेस्टिंग हो रही है मास लेवल पे, और जो हमारे आदिवासी एरियाज हैं और उससे लगे हुए एरियाज हैं उनमें मास लेवल पे हमारे गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट ने वो टेस्टिंग सेंटर्स बना रखे हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन्स दे रखी हैं, टेस्ट करके, डायग्नोस करके, ट्रीटमेंट करने के लिए, और उससे ताकि हमें पता चले कि कहां कहां तक ये चीजें फैली हुई हैं।
1: इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम जानना चाहें कि इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट है या फिर दवाइयों से ही इसे लाइफ टाइम क्योर करना होता है?
0: देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपकी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो सिकल सेल होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है। फिर उसके बाद पता चलता है कि हमको दो दवाइयां, एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके एक टैबलेट है और एक फॉलिक एसिड है, ये दोनों टैबलेट्स लेनी है। बट अगेन, किसको लेनी है ये एक डॉक्टर के परामर्श के बाद ही पता चलेगा, और ये लाइफ टाइम चलेगी दवाई, और इससे जो भी इस चीज से ग्रसित हैं तो वो जब दवाई को लेंगे टाइम टू टाइम तो इनका सिकल सेल जो होगा वो क्योर हो जाएगा, वो बढ़ने से रुकेगा और अनीमिया जो है उसको ठीक हो जाएगा और उनके जॉइंट पेन्स वगैरह बेटर हो जाएंगे। एक तो ये ट्रीटमेंट है, इसके आगे जो ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो कि सिकल सेल में होता है।
1: डॉक्टर साहब, मतलब साफ शब्दों में अगर हम कहें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात आ जाती है। जहां तक मैं जानती हूँ ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ते तो नहीं है, हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा इन्हें।
0: देखिए, आपने सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेसिकली जब उस टाइम हस्बैंड और वाइफ का जब HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो ही हमें 100% पता चल जाएगा कि ये हमें आगे हमारे बच्चों तक ये जाएगा कि नहीं, और अगर इन केस हो गया है और बच्चे होने के बाद वो पता चला है तो बच्चों का प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है, उनको टाइम टू टाइम दवाई देनी है, हाइड्रोक्सी यूरिया बहुत ही सस्ती मिलती है, फॉलिक एसिड बहुत सस्ती दवाइयां हैं, और इसी से 90% लोग क्योर हो जाते हैं। पर उनको ठंड से बचना है और उनको पानी खूब पीना है और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहना है।
1: जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज का डे जो है वो सेलिब्रेट तो किया ही जाए लेकिन हमारे देश के बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें। इसके लिए माता पिता जो हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं। तो सर, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इस वैल्यूबल सब्जेक्ट पर हमारे सभी श्रोताओं को अवेयर करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर अभी आप सुन रहे थे क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निपुण माधव को। दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि देश का हर बच्चा स्वस्थ हो, चिरंजीवी हो, और ऐसी कोशिश और प्रयास हम सभी को हर स्तर पर करना ही चाहिए। तो फिलहाल आप चलिए हमारे साथ संगीत की दुनिया में।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और आज की इस खूबसूरत सी सुबह में खूबसूरत से सफर पर आपके साथ चल रही हूँ मैं शिखा जैन। और कार्यक्रम में वक्त हुआ है हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, आने वाली 21 जून को सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि जीवन के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक अवस्था में योग कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की। और इसी श्रृंखला में आज हमारा विषय है कि गर्भ अवस्था में योग के महत्व को जानना। और आज की ये चर्चा हमसे कर रही हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की योग विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर साधना दोनेरिया।
1: योग वैसे सभी अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि गर्भावस्था से ही योग प्रारंभ कर दिया जाए, जो संतति इस संसार में जिसका आगमन होना है वो संस्कारित होकर ही आई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रहलाद, जो एक राक्षस कुल से थे जिनके पिता हिरण्यकश्यप, लेकिन किसी कारणवश उनकी माता को नारद जी के आश्रम में रहना पड़ा था। महर्षि नारद जी के आश्रम में उनकी माता रही थी, तो जो 9 महीने उनका जन्म भी नारद जी के आश्रम में ही हुआ था। तो महर्षि नारद जी के आश्रम में जो वातावरण मिला, जो आचार विचार मिले, जो उनकी नियमित दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, वो पूर्णतः सात्विक थी। तो एक सात्विक जीवन शैली में रहना, एक सात्विक संस्कारित संसति का जन्म होना निश्चित है, और हमारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं, जिसमें एक प्रहलाद नहीं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे जो संसार में आज भी हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में लिपिबद्ध हो चुके हैं। गर्भावस्था में योग इसलिए आवश्यक है कि गर्भावस्था में स्त्री की शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियां चेंज हो जाती हैं। शारीरिक स्थिति में तो बदलाव आता ही आता है, मानसिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा बदलाव आता है। उसके शरीर में जो अंतः स्तर पर जो भिन्न चेंज हो रहे हैं, भिन्न भिन्न बदलाव होते हैं समय के साथ साथ, उसके खान पान में बदलाव आता है, उसके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। कई बार अच्छी यदि उसकी हेल्थ नहीं है, अच्छी तरह से देख रेख नहीं हो रही है, तो उसके अंदर कमजोरी का आना स्वाभाविक है। और जब स्त्री कमजोर होती है तो उसके, क्योंकि ये जो शुरू का समय होता है, पहले जो 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इन 3 महीनों के अंतर्गत एकदम से उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को वो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं हो पाती है। कई बार, कई केसेस में, मैं ये नहीं कहती कि 100%, लेकिन कई केसेस में महिलाएं तैयार नहीं हो पाती हैं। उसके लिए एक सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति यदि पहले से योग कर रहा है तो उसकी सकारात्मक सोच का होना स्वाभाविक है। सकारात्मक सोच होगी, अच्छा शरीर और मन स्वस्थ होंगे, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। मन का स्वस्थ होना इसलिए आवश्यक है कि यदि मन स्वस्थ है तो आपके अनेक प्रकार के विचारों से, जो विचार हमें हमारे मार्ग से हटाने वाले हों, हमारे उद्देश्य से दूर करने वाले हों, या हमारे विचारों के नकारात्मक विचार आ रहे हों, वो हमारी हेल्थ के लिए निश्चित रूप से खराब होते ही होते हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसे मैंने कहा कि स्वस्थ विचारों का होना भी बहुत आवश्यक है। स्वस्थ विचार होंगे, निश्चित रूप से उसकी मानसिकता स्वस्थ होगी। स्वस्थ मानसिकता होगी, वो आने वाले जीव का बहुत आनंद के साथ स्वागत करेगी, और उसके पालन के लिए, उसके आगमन के लिए प्रतीक्षा करेगी, और क्या क्या शारीरिक और मानसिक रूप से तैयारी हो सकती है वो एक अच्छी दृष्टिकोण के साथ वो सोच रख सकती है और कर सकती है। अब इस गर्भावस्था में योग भी आवश्यक है, तो पहले 3 महीने तो हमें योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो परिवर्तन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, कई बार जिन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया है तो वो उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और यदि करना भी है कुछ रिलैक्सेशन वगैरह, तो हमें एक योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। 3 महीने के पश्चात हमें जो भी हम योग प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। रिलैक्सेशन इसलिए आवश्यक है कि शरीर में जो बदलाव आता है वो व्यक्ति को थोड़ा व्यथित कर देते हैं। जिनकी आत्मविश्वास थोड़ा सा कम होता है जिनमें, वो इस बदलाव से विचलित हो जाते हैं। जिनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है वो इस बदलाव को प्रसन्नता के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस वक्त माता गर्भ से है, गर्भ अवस्था में माता को बहुत ही शानदार सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक सोच और भोजन भी हमें बहुत व्यवस्थित रूप से लेना चाहिए। जितना सात्विक भोजन होगा उतना ही सात्विक विचार उत्पन्न होंगे, जितना सात्विक विचार उत्पन्न होंगे उतनी ही उसकी सोच सकारात्मक होगी। स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ विचार होगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा ये भी है कि महिला की आत्मविश्वास और आत्मबल उच्च स्थिति के होने चाहिए। यदि आत्मबल में भी कमी है तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जरा सा पेन हुआ, जरा सी स्थिति में बदलाव हुआ आया और वो तुरंत से घबरा जाते हैं। तो जो अव्यवस्थित हो जाते हैं चित्त के स्तर पर, उस चित्त के स्तर पर अव्यवस्थित न होकर के हमें इस प्रकार से आचरण और व्यवहार करना चाहिए कि जो भी विपरीत स्थिति है, इस स्थिति को हम स्वयं कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, यही हमें योग सिखाता है। साधारण और अनुकूल स्थितियों में तो हम सभी रह लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल और विपरीत परिस्थिति में रहने की स्थिति, रहने की सामंजस्य, रहने की सामर्थ्य योग हमें प्रदान करता है। तो योग एक ऐसी कला है जो आपको आत्मविश्वास प्रदान करती है और इस आत्मविश्वास के बल पर हम कोई भी कार्य बहुत अच्छा निश्चित रूप से कर सकते हैं।
0: जी मैडम, गर्भावस्था के संबंध में योग के महत्व को, जीवन में योग के महत्व को बखूबी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को श्रोताओं के बीच पहुँचाने का एक माध्यम आपने मुझे चुना, धन्यवाद।
0: गर्भावस्था में योग के महत्व के विषय में अभी आप सुन रहे थे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के योग विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर साधना दुनेरिया से। दोस्तों, करें योग और रहे निरोग, क्योंकि अच्छा संगीत भी एक तरह का योग ही है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संगठन द्वारा छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना का आयोजन संचालन किया जा रहा है। क्यों छात्रों के लिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी हमें दे रहे हैं श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के कल्याण आयुक्त केंद्रीय श्री नवीन वैजी।
1: आपके माध्यम से सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार कहना चाहूंगा। साथ ही श्रम कल्याण संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। श्रम कल्याण संगठन बीडीए एवं खदान एवं सीनियर श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना का संचालन करता है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चे पढ़ाई बीच में ना छोड़े और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। इस योजना के अंतर्गत कक्षा एक से लेकर तो प्रोफेशनल कोर्स तक कक्षा एक से लेके भी हम कहा जाए तो एक से लेके चौथी कक्षा तक 1,000 रुपए, कक्षा पांचवी से लेके आठवीं तक 1,500 रुपए, कक्षा नौ से और दसवीं के लिए 2,000 प्रतिवर्ष, कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए 3,000 रुपए प्रतिवर्ष, डिप्लोमा आईटीआई और स्नातक कोर्स के लिए 6,000 प्रतिवर्ष, और यदि कोई श्रमिक का बच्चा प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग या एमबीबीएस कोर्स इस तरह के करता है तो 25,000 रुपए प्रतिवर्ष की स्कॉलरशिप उसे प्रदान की जाती है।
2: जी, क्या अकादमिक वर्ष 2026-27 में योजना के प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है?
1: जी बिल्कुल। इस वर्ष पहले क्या होता था, इस योजना के अंतर्गत जो है यदि किसी बच्चे को कोई जो मेरिटियस बच्चा है यदि उसको वो छात्रवृत्ति मिल रही थी तो उसको बड़ी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी। भारत सरकार के संज्ञान में जब ये इस तरह की समस्या आई तो उन्होंने इस बार इस योजना में बदलाव किए। अब इस छात्र योजना को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक योग्यता आधारित जो है स्कीम से है जिसपे चयन मुख्यतः छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों और मेरिट के आधार पर होता है, और दूसरा यदि हम बात करें तो कल्याणकारी योजना से संबंधित योजना है जो विशेष वर्ग जैसे बीड़ी श्रमिक, बीड़ी सिनेमा, खदान श्रमिक आदि के कल्याण हेतु संचालित होती है। अर्थात अब छात्र मेरिटेरियस है तो उसको वो छात्रवृत्ति भी मिलेगी, और यदि बीड़ी श्रमिक और खदान श्रमिक है या सीनियर वर्कर्स है के उसके माता पिता हैं तो उसको इस योजना का भी लाभ जो है भारत सरकार प्रदान करेगी।
2: सर, इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
1: ये योजना पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर लॉग इन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। जो भी इस योजना के अंतर्गत जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो अपलोड करना पड़ते हैं, और स्कूल और कॉलेज से जहाँ पे भी बच्चा जो पढ़ रहा है वहाँ से इसका ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन कराना होता है।
2: जी, ये जो योजना है इसमें आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हुई है

0: और इसकी अंतिम जो तिथि है वो कब तक है?
1: ये जो योजना है इसकी आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, और मैं साथ ही बताना चाहता हूँ कि ये इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अंतिम तिथि जो है भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
0: जानना चाहेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या रहेगी?
1: जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भी बालक या बालिका इसमें इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, तो सभी वैध वैध परिचय पत्र धारक बीडी तथा खदान श्रमिक जिनके बच्चे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय में कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत है, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। और जो दस्तावेजों की जरूरत है, तो यदि बीडी श्रमिक है तो उसको अपने श्रमिक अपने माता या पिता का परिचय पत्र अपलोड करना होता है। यदि उसके माता पिता खदान श्रमिक हैं तो उस स्थिति में फॉर्म B रजिस्टर होता है, उसका नंबर जो है उसको अपलोड करना होता है। विद्यार्थी अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले साल जो उसने कक्षा उत्तीर्ण की है उसकी अंक सूची को इस NSP पोर्टल पर अपलोड करना होता है।

0: आपको अपने श्रमिक अपने माता या पिता का परिचय पत्र अपलोड करना होता है। यदि उसके माता पिता खदान श्रमिक है तो उस स्थिति में फॉर्म बी रजिस्टर होता है, उसका नंबर जो है उसको अपलोड करना होता है। विद्यार्थी अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले साल जो उसने कक्षा उत्तीर्ण की है उसकी अंक सूची को इस NSP पोर्टल पर अपलोड करना होता है।
1: सर, क्या ये छात्रवृत्ति हर साल मिल सकती है?
0: जी जी, मैं आपके माध्यम से सभी श्रमिक भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ कि यदि विद्यार्थी अगले वर्ष भी पढ़ाई जारी रखता है उसे पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। उसी पोर्टल पर एक रिन्यूअल का ऑप्शन यानी कि नवीनीकरण का एक ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से वो अपना नवीनीकरण कर सकता है, यानी कि उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आवेदन में रिन्यू करना है।
1: इस योजना का जो पैसा है वो लाभार्थियों तक कैसे पहुँच पाता है?
0: जी मैं बताना चाहूंगा कि यह योजना जो है सीधे ही लाभार्थी का जो भी बैंक खाता उसने दिया है उसमें DBT के माध्यम से जो है उसको ये राशि जो है हस्तांतरित हो जाती है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जब भी वो इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करें तो अपना KYC अपडेट रखें, यानी कि आधार कार्ड से लिंक हो आपका, कहीं इस तरह की तकनीकी समस्या बाद में आती है।
1: अगर कोई लाभार्थी आवेदन में गलती कर देता है तो क्या सुधार की संभावना है?
0: जी जी बिल्कुल, स्कूल कॉलेज या नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के अंदर जो है ये सुधार की प्रक्रिया की जा सकती है।
1: सर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं?
0: जी, पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती थी कि कई बार जो है स्कूलों के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रहते हैं या नोडल इंस्टीट्यूट रहते हैं उसका स्थानांतरण होने की स्थिति में उनको लॉगिन ID जो है अपडेट नहीं हो पाता था। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारी, कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थाओं में इस योजना की जानकारी दें ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इसके नोडल हैं, जैसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है या नोडल ऑफिसर्स है, IUNI लेवल के अधिकारी हैं, वो अपनी लॉगिन ID जरूर अपडेट करवा लें।
1: जी, आपसे जानना चाहेंगे इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क भी लगता है?
0: जी मैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं बताना चाहूंगा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस देने की आवश्यकता किसी भी बालक को या बालिका को नहीं।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन अगर किसी छात्रवृत्ति योजना से संबंधित और कोई जानकारी अगर हमारे विद्यार्थी लेना चाहे तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: जी जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि श्रम कल्याण संगठन का जो मुख्यालय जो है, जहाँ पे मैं पदस्थ हूँ, यानी कि जबलपुर में है, कल्याण एवं उपकर आयुक्त का कार्यालय जो है जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में 33 BD एवं खदान श्रमिक कल्याण निधि औषधालय संचालित है। साथ ही हमारा सागर में एक BD अस्पताल के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध अस्पताल है, वहाँ से भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारे मुख्यालय का दूरभाष क्रमांक है 07614039510, इस नंबर पर भी योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो अंतिम दिनांक का वेट ना करें और आज ही अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जो है आज ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
1: जी सर, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इस योजना से संबंधित जानकारी को हमारे सभी लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
2: छात्रवृत्ति योजना के विषय में अभी आप सुन रहे थे श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के कल्याण आयुक्त केंद्रीय श्री नवीन वैद्य जी को। दोस्तों, अपने आसपास रह रहे पात्र विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ जरूर दिलवाइएगा। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए चलते चलते इस गीत को।

0: इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने रेडियो मित्र शिखा को, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रातः के 8 बजने को है, सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु

0: तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी

0: करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2

0: से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, हॉर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में हैं जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जिसे लेकर आज आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं। आज सुबह मैं चाय की चुस्की ले रही थी, तब अचानक मेरा ध्यान एक छोटी सी बात पर गया कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के शौकीन होते हैं, है ना? किसी को चाय पसंद है, किसी को गाने सुनना, तो किसी को सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना। शौक होना अच्छी बात है, लेकिन शौक से जिंदगी में रंग भरते हैं वो और अच्छी बात है। पर कभी आपने सोचा है कि ये शौक कब चुपके से एक लत यानी एडिक्शन बन जाते हैं? जब तक आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आपका शौक है, लेकिन जिस दिन वो चीज आपको कंट्रोल करने लगे वो लत है। तो आज कार्यक्रम में बातें हमारी कुछ ऐसी आदतों की, आदतें जो कब लत में बदल जाती हैं, हम कैसे उन्हें रोकें या ऐसा क्या करें, कैसे करें कि ये आदतें या लत हमारे लिए हानिकारक ना बने, जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम सुरमई सवेरा आकांक्षा के साथ।

श्रोताओं, हमारी आदत, हमारी लत कब बन जाती है ये हम जान ही नहीं पाते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण अगर हम लें तो हम लोग कहते हैं कि चाय की लत मुझे नहीं है, मैं तो बस मूड फ्रेश होने के लिए चाय पीता हूँ या पीती हूँ। लेकिन अगर किसी दिन सुबह चाय ना मिले और दोपहर तक सिर फटने लगे, गुस्सा आने लगे, तो जनाब वो मूड फ्रेश करने का साधन नहीं बल्कि एक डिपेंडेंसी बन चुकी होती है। यानी हमारी चाय पीने की आदत हमारी लत बन चुकी होती है। ऐसे ही मान लीजिए आप एक खूबसूरत पार्क में बैठे हैं, सुहाना मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, आपकी जेब में आपका फोन वाइब्रेट होता है, आप बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाते हैं और फिर क्या होता है ये सब हम जानते हैं। अगले 45 मिनट तक हम उसी स्क्रीन में खोए रहते हैं, ना हमें हवा का एहसास हुआ, ना चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी, यहाँ तक कि हमारे सामने अगर कोई दोस्त भी बैठा होता है तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस दौर की सबसे बड़ी लत है डिजिटल एडिक्शन। हम दुनिया से जुड़ने के चक्कर में अपने सामने बैठे इंसान से कटते जा रहे हैं। फोन हमारी सहूलियत के लिए बना था, लेकिन आज हालात ये है कि फोन घर पर छूट जाए तो ऐसा लगता है जैसे सांसें

गई हूँ। तो हमें क्या करना है? क्या हम अपने स्मार्टफोन को नो फोन कह पाएंगे?

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जिसमें हम बातें कर रहे हैं लत यानी एडिक्शन की। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि लत बुरी होती है, चाहे वो फोन की हो, गेमिंग की हो या किसी खराब आदत की। लेकिन क्या हर लत सच में बुरी होती है, या फिर हम सिक्के का सिर्फ एक पहलू ही देख रहे हैं? श्रोताओं, अब मैं आपसे कहूं कि एक लत ऐसी भी है जो आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं बल्कि आबाद कर सकती है। जी हाँ, अब बात है सकारात्मक लत की। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो अपनी मंजिल के लिए मामूली शौकीन नहीं थे, वो उसके लिए

ये लती थे। एडिसन को लत थी नए आविष्कार करने की, तभी तो वो हजार बार फेल होकर भी बल्ब बना पाए। सचिन तेंदुलकर को लत थी मैदान पर पसीना बहाने की, और एआर रहमान साहब को लत है धुनों से खेलने की। इसे कहते हैं जुनून वाली लत, जब आपका दिमाग किसी सही चीज के पीछे इस कदर दीवाना हो जाए कि आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो लत आपको खुद ब खुद बिस्तर से उठा दे। यही है हमारी सकारात्मक लत। ये लत वो है कि जब जिद बन जाए कामयाबी। जब दुनिया आपसे कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब उठकर खड़े होना और खुद को साबित करना, यही तो असली लत है। सुखविंदर सिंह की कड़क आवाज में लीजिए सुनिए खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, फिल्म सुल्तान से ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, जरूरी नहीं कि लत सिर्फ काम की ही हो। कभी कभी इस खूबसूरत दुनिया को देखने और जीने की लत भी कमाल की होती है। रणबीर कपूर की तरह दिल से कहिए, इलाही मेरा जी आए आए।

श्रोताओं, ज़रूरी नहीं कि हम इतिहास ही रचें, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी कुछ अच्छी लतें हो सकती हैं। जैसे किसी को रोज़ सुबह दौड़ने की लत होती है, अगर वो एक दिन ना दौड़े तो उसका दिन अधूरा रहता है। किसी को किताबें पढ़ने की लत होती है, तो किसी को रोज़ कुछ नया सीखने की और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की। और श्रोताओं, जब जुनून सिर पर चढ़ता है ना, तो इंसान रुकता नहीं है, बस अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है। कुछ इस तरह बस अपने अंदर के जोश और जुनून को जगाने की हमें देर होती है।

श्रोताओं, लत की आदत बहुत बड़ी है, बस इसकी दिशा बदलनी है। लत को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि इसे अपनी महाशक्ति बना लीजिए। तो अपनी पुरानी आदतों की जंजीरों को तोड़िए और खुद से कहिए कि अब लत लगानी है तो सिर्फ अपनी जीत के लिए।

0: देश भर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। पेरिस में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा कि 12 साल के समय में भारत का GDP दुगना हुआ है। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या भी दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास में कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हमें नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर प्रदेश को ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सशक्त केंद्र बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के राजगढ़ और अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा के लिए जिले के 32 केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं की कल समीक्षा की और भोपाल नगर निगम द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु 84 जल नमूनों की जांच की गई और पाइपलाइनों के 35 लीकेज सुधारे गए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं। कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, जब हम हमारी पुरानी और ख़राब आदतों के अंधेरे से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करने की लत पालते हैं ना, तो ज़िंदगी में एक नई सुबह होती है। तो आइए महसूस कीजिए इस नई सुबह की रोशनी को।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये जारी रहेगा इस घंटे की खास खबरों के बाद। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारे

श्रोताओं, साइंस कहता है कि जब भी हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये हमें खुशी का एहसास कराता है। हमारा दिमाग इस खुशी को बार बार पाना चाहता है और बस यहीं से शुरुआत होती है उस चक्रव्यूह की जिसे हम लत कहते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के लाइक्स हों, वीडियो गेम्स हों या फिर कोई बुरी आदत।

श्रोताओं, सीधी सी बात यह है कि अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल को किसी चीज, किसी स्क्रीन या किसी आदत के हाथ में मत सौंपिए। अगर आपको लगता है कि कोई आदत आप पर हावी हो रही है तो आज ही छोटा सा पॉज लीजिए, चाय पीजिए लेकिन बातचीत के लिए, फोन चलाइए लेकिन अपनों से मिलने का वक्त चुरा कर नहीं, खुद के मालिक बनिए।

0: श्रोताओं, अगर शौक की बात करें तो शौक पालिए, लेकिन अगर लत लगानी ही है तो अपनी ग्रोथ की लगाइए, अपनी फिटनेस की लगाइए, खुद को कल से बेहतर बनाने की लगाइए। ऐसी लत जो आपको तबाही की तरफ नहीं तरक्की की तरफ ले जाए वो लगाइए। लत बदलो, जिंदगी बदलेगी। इसी बात के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा समाप्त करने की आकांक्षा को दीजिए अनुमति। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रातः के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

जिस प्रकार प्रलोभनों के उपस्थित होने पर उनका शिकार होने से बचने में कामयाब होने पर ही मनुष्य को प्रलोभनों से मुक्त माना जा सकता है, उसी प्रकार हमने क्रोध को जीत लिया है। ये तभी कहा जा सकता है जब क्रोध के पर्याप्त कारणों के उपस्थित होने पर भी हम संयमित रहने में कामयाब हो जाएं। कुछ विद्यार्थियों ने धरने पर बैठने के रूप में बर्बरता के पुराने स्वरूप को पुनर्जीवित किया है। मैं इसे बर्बरता इसलिए कहता हूं कि ये जोर जबरदस्ती करने का एक भद्दा तरीका है। ये कायरतापूर्ण भी है, क्योंकि धरने पर बैठने वाला व्यक्ति जानता है कि उसे कुचला नहीं जाएगा। धरने को हिंसक कहना तो कठिन है, पर यह निश्चित रूप से उससे भी बुरी चीज है। अगर हम अपने विरोधी से लड़ते हैं तो कम से कम उसे ये अवसर तो देते हैं कि वो हमारे घूंसे का जवाब घूंसे से दे। लेकिन जब हम ये जानते हुए भी कि वो ऐसा नहीं करेगा, उसे अपनी छाती पर पांव रखकर निकल जाने के लिए ललकारते हैं, तो हम उसे एक कष्टकर और लज्जास्पद स्थिति में डाल देते हैं। मैं जानता हूं कि जो विद्यार्थी धरने पर बैठे थे, उन्होंने इस कृत्य की बर्बरता के बारे में कभी विचार नहीं किया था। लेकिन जिस व्यक्ति से अपनी अंतर्वाणी का अनुगमन करने और कठिनाइयों का अकेला ही सामना करने की आशा की जाती है, उसे विवेकहीन कभी नहीं होना चाहिए। हमें अधैर्य, बर्बरता, धृष्टता या अनुचित दबाव का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं, तो हमें अधैर्य का त्याग करना होगा। अधैर्य व्यक्ति की अपने ध्येय में आस्था न होने का परिचायक है। मेरे हिरासत में लिए जाने पर इतनी उत्तेजना और उपद्रव का जो प्रदर्शन हुआ, उसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। ये सत्याग्रह नहीं है, ये तो दुराग्रह से भी गया बीता है। सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग इस अनुशासन से बंधे थे कि वे कितना ही संकट आए पर हिंसा पर उतारू

नहीं होंगे, पथराव नहीं करेंगे और किसी को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बंबई में हमने पथराव किया है, हमने बाधाएं खड़ी करके ट्रामों को चलने से रोका है, ये सत्याग्रह नहीं है। हमने हिंसा के जुर्म में पकड़े गए 50 आदमियों को छोड़े जाने की मांग की है। हमारा कर्तव्य तो मुख्यतः गिरफ्तारी देना है। जिन्होंने हिंसक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है उन्हें छुड़ाने का प्रयास करना अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत होना है। मैंने अनगिनत बार कहा है कि सत्याग्रह में हिंसा, लूटपाट और आगजनी के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी सत्याग्रह के नाम पर हमने इमारतें जलाई हैं, जबरन हथियार छीने हैं, रुपए ऐंठे हैं, रेलें रोकी हैं, टेलीफोन के तार काट दिए हैं, निर्दोष लोगों की जानें ली हैं और दुकानों तथा निजी घरों को लूटा है। यदि ऐसे कृत्यों से मुझे जेल या फांसी से बचाया जा सके तो मैं इस तरह बचना पसंद नहीं करूंगा। बुरे उद्देश्यों के लिए वीरता प्रदर्शित करना तथा बलिदान देना उत्तम ऊर्जा का अपव्यय है और बुरे उद्देश्य के लिए वीरता तथा बलिदान के दुरुपयोग को गौरवान्वित करने से लोगों का ध्यान अच्छे उद्देश्यों की ओर से हटता है। सत्ता के अंधाधुंध प्रतिरोध से अव्यवस्था और उसके फलस्वरूप विनाश की स्थिति ही उत्पन्न होती है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कुमार का लिखा, अमाल मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम था एयरलिफ्ट। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म अजहर का गीत। गीत मनोज यादव का है और संगीत है प्रीतम का।

सनम रे। इस फिल्म का गीत सुनिए मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला की आवाज़ों में। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: फिल्म संगीत जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म काबिल का गीत। बोल मनोज मंतुशिर के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाज़ों में। गीत लिखा है कुणाल वर्मा ने, इसे संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने और फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सीहोर जिला इन दिनों प्री मानसून की बारिश से तरबतर नजर आ रहा है। बारिश के चलते भीषण गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सीहोर में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते दिनों सीहोर जिले के भैरुंदा में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना 4 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किया। पिछले दिनों सीहोर के क्रिसेंट ग्रीन गार्डन के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के रहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की और कलश यात्रा में शामिल हुई। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी को हटाने के लिए उन्होंने घाट पर श्रमदान भी किया। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान, गेहूं उपार्जन, पेयजल आपूर्ति और जिले में किए गए नवाचारों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीहोर जिला में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जिले में 7,46,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। वर्तमान तक 87,974 किसानों से 6,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीहोर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 789 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 221 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क पाई गईं। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर बाला गुरु के की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित जिला स्तर पर टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में भारत की 16वीं जनगणना का अभियान उत्साह के वातावरण में शुरू हो गया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रगणक द्वारा घर घर पहुंचकर मोबाइल ऐप के माध्यम से मकानों के सूचीकरण का कार्य किया गया। ज्ञान भारत अभियान के अंतर्गत सीहोर जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण और डिजिटलीकरण को लेकर संयुक्त कलेक्टर जमील खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सीहोर की जीवनदायिनी सीवन नदी के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के तहत जिले में लगे शिविरों में 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। 1 वर्ष से अधिक उम्र के 362 बच्चों को भी टीके लगाए गए। सीहोर के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के वातावरण में क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने वाले प्रयास लगातार किए गए। जिले में 2,94,408 विद्यार्थियों में से 2,06,298 विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जा चुकी है। शासकीय आरएके कृषि कॉलेज ने जिले में खरीफ से पहले सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण आयोजित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अनुगूंज पहल के तहत जिला न्यायालय परिसर में श्रवण और वाक बाधित समुदाय के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाया। जिले में एक बड़ी उपलब्धि के तहत सीहोर के मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के 38 कराटे खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। सीहोर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का था और वाचन स्वर धारणा सचदेव का। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म सिंग इज किंग का गीत। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

सईद कादरी का लिखा प्रीतम के संगीत से सजा हुआ गीत सुनिए शफ़क़त अमानत अली की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मर्डर 3।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे कुछ ही पलों में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी विविध भारती के समस्त केंद्रों से प्रसारित इस विशेष सजीव प्रसारण में मैं मुकाम सिंह चौहान अपने साथी असीम कैथवास,
1: स्वास्थ्य संवर्धन
0: नीरज कुलकर्णी, वैभव मंडलोई और नानक सिंह बंडोत के साथ आप सभी का सादर पूर्वक अभिवादन कर रहा हूँ। नमस्कार। बताओ, आज हम उपस्थित हैं मांधाता की पावन नगरी ओंकारेश्वर में, जहाँ माँ नर्मदा के तट पर अध्यात्म के साथ साथ आज और अध्याय लिखा जा रहा है। आज 19 जून है और ये विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष गरिमामयी कार्यक्रम में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रही हैं देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति के विशेष आतिथ्य में आयोजित हो रहे इस गरिमामयी कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की उस परिकल्पना और योजनाओं को नई दिशा मिल रही है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी मध्य प्रदेश की धरती शहडोल में साकार करने का संकल्प लिया था। श्रोताओं, सिकल सेल एनीमिया विशेष रूप से हमारे जनजातीय भाई बहनों को प्रभावित करने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है। आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस रोग के समूल नाश के लिए एक महासंकल्प है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को सिकल सेल से मुक्त बनाना है। आज माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति यह दर्शाती कि देश की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का स्वास्थ्य और खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने सिकल सेल एनीमिया जूझते आदिवासी भाई बहनों को बहुत ही निकटता से देखा है, उनकी पीड़ा और समस्याओं को दिल की गहराइयों से अनुभव किया है। अपने भाई बहनों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर रोग के समूल उन्मूलन के लिए वे कृत संकल्पित होकर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया और इसे अपनी सरकार की कार्य सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज ये एक जन अभियान बन चुका है, जिससे हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है, जुड़ना चाहता है और हमें पूरा यकीन है कि ये महाअभियान सिकल सेल एनीमिया के समूल नाश के लिए निरंतर चलता रहेगा। हम आपको बताएं कि माननीय राष्ट्रपति, देश के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इंदौर खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ गणमान्य अतिथिगण कुछ ही क्षणों में यहाँ मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। भी यहाँ पर मंच के पीछे दाहिने तरफ एक विशाल फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है और इस

फोटो प्रदर्शनी का माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय मंत्री गणों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। इस फोटो प्रदर्शनी में माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के उन दुर्गम और ऐसे आदिवासी अंचलों में जहां सिकल सेल के रोगी बहुतायात में हैं वहां भ्रमण किया गया और उन भ्रमण की तस्वीरों को यहां फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय अतिथियों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को माननीय राज्यपाल स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे कृत संकल्पित हैं इस सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति को लेकर। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इससे पहले जब वे गुजरात में थे जनप्रतिनिधि के रूप में थे तब भी उन्होंने वहाँ इस अभियान को आगे बढ़ाया और जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर यहाँ आए तो उन्होंने आरंभ से ही इस अभियान को गति दी और आज ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का एक उदाहरण है जो अब निरंतर स्क्रीनिंग के माध्यम से, खासकर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ लगभग हर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के साथ ही परीक्षण और टेस्ट भी उपलब्ध हैं। और आपको बता दें कि माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ चुके हैं और समस्त सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। आज हर्षित है पावन नगरी ओंकारेश्वर की इस धरा पर और हर्षित है ये सारी जनता जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिवादन कर रही है। उन्हें इतनी समीपता से देखने का उन्हें प्राप्त हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया कल 18 जून को ओंकारेश्वर पधारी और संध्या में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं और उनके दर्शन किए, पूजन किया और उसके पश्चात पावन पवित्र सलीला माँ नर्मदा के तट पर महाआरती में सम्मिलित हुई और आज ये भव्य आयोजन कहीं न कहीं इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के उस संकल्प को जिस अंतर्गत राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत पूरे देश में सिकल सेल रोगियों का परीक्षण स्क्रीनिंग करना है और 2047 तक इस व्याधि से, इस रोग से कोई भी शेष ना रह जाए, ये लक्ष्य है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उनके इस प्रयास में देश की सरकार और समस्त राज्यों की सरकारें और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंगनवाड़ी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जो सिकल सेल मित्र हैं वे हर क्षेत्र में जा रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सिकल सेल की बीमारी से बचना है, किस प्रकार से उसका उपचार अब मध्य प्रदेश सरकार के विभागों द्वारा हम सभी के लिए आसान हो रहा है, ये सभी देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल महोदय मंगूभाई पटेल मंचासीन हो चुके हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आयुष मंत्री मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच पर उपस्थित होने वाली हैं और उपस्थित होते ही इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ होगा दीप दीपन के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ पर जो जनसमूह है वो न केवल खंडवा और अंचल के क्षेत्रों से बल्कि प्रदेश के लगभग 17 ज़िलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो खासकर सिकल सेल प्रभावित क्षेत्रों से संबद्ध हैं, वे सभी यहाँ पर आए हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा
सिकल मित्रों को सम्मानित किया जाए।

0: जाएगा, उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो विभाग के अंतर्गत जो चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो टीम है वो यहाँ पर उपस्थित हैं और आज का ये जो कार्यक्रम बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए हैं, क्योंकि आज हम पावन नगरी भगवान श्री ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की नगरी में उपस्थित हैं और ये एक ऐसा अवसर है जब दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति आज यहाँ ओंकारेश्वर में उपस्थित हुए हैं। तो समूची नगरी अपने को अभिभूत कर रही है, धन्य मान रही है और ख़ासकर चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पावन नगरी बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए हैं। मानधाता की नगरी है ये, जिसे आज हम मुख्य रूप से ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है यह नगरी। मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे और उस बीच एक द्वीप पर बसी है। इस नगरी का इतिहास, धार्मिक महत्व और भौगोलिक जानकारी तो आप सभी को ज्ञात होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नगरी का मूल नाम मानधाता या शिवपुरी है। पुराणों के अनुसार सूर्य वंश के महान और प्रतापी राजा मानधाता, जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज थे, ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा के तट पर स्थित पहाड़ों पर बैठकर भगवान शिव की अत्यंत कठिन आराधना की थी। वे केवल नर्मदा जी का जल पीकर वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। राजा मानधाता ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे जन कल्याण के लिए इस स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से इस पर्वत और नगरी का नाम मानधाता पर्वत और मानधाता नगरी रहा। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अब वो क्षण आ चुके हैं जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
1: जी पधारे,
0: दोनों हाथ जोड़कर सभी को उपस्थित जनता को अभिवादन करते हुए अपने और उन्होंने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर सभी लोगों का अभिवादन किया और अब वे अपने स्थान पर उपस्थित हो चुकी हैं और अब राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान हो रहा है।

0: विद्यार्थियों और समस्त सभा में उपस्थित जनसमूहों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान
1: भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुण्यधरा जिला खंडवा में
0: इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ होने जा रहा है। और माननीय राष्ट्रपति महोदया, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री द्वारा दीप दीपन का कार्यक्रम आरंभ होगा। और श्रोताओं, आप बता दें कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय मंत्री आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जनजातीय कार्य, इसके अतिरिक्त माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो कि संस्कृति विभाग एवं उसके प्रभारी मंत्री भी हैं खंडवा के, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल भी इस समारोह में मंचासीन है। और माननीय सांसद खंडवा के श्री गणेश्वर पाटिल और श्री नारायण पटेल, माननीय विधानधाता यहां पर उपस्थित है। और अब आरंभ हो रहा है इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ। माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जा रहा है और देव शक्तियों का आह्वान स्मरण किया जा रहा है। आज एक भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी पर गंभीर चोट होगी।
1: समावेशी भारत के निर्माण का एक राष्ट्रीय संकल्प।
0: यहां उपस्थित जनसमूह, माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंचासीन अतिथियों का हृदय से स्वागत कर रहा है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में किसी भी सुअवसर का आरंभ देव स्तुति के माध्यम से होता है। और ये नगरी तो साक्षात भगवान शिव की स्थली है, जहाँ वे ओंकारेश्वर और बम्बलेश्वर के रूप में दो दो स्वरूप में विराजित है। हम सभी और अब आपको बता दें कि अब कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। दीप दीपन के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

0: शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल संबोधित कर रहे हैं।
1: आज कृपा पूर्वक पधारी देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल जी, सभी विधायकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर डॉक्टर देश की प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। हम लोगों को याद है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन के अभियान का शुभारंभ किया था, और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2047 में सिकल सेल एनीमिया पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके ही चैन की सांस ले। और आज जब राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तब मैं उनके सामने अपने राज्यपाल जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार हर 2 महीने में एक मीटिंग राजभवन में होती है, कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने रोगी पाए गए, कितने वाहक हैं, कितने सिकल सेल मित्र बने, जेनेटिक कार्ड कितने बने, शादी के पहले जिस तरह से कुंडली मिलाकर शादी करने की परंपरा हमारे यहाँ है, उसी प्रकार से उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने का और नीचे तक इस बात को ले जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि कुंडली के साथ साथ आदिवासी बाहुल 20 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं, उसमें जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जेनेटिक कार्ड मिलाए हुए शादी ना करें, जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा ना हों जो सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जी का हम अभिनंदन करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग देश में सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए, और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग 1,60,00,000 में से हमने कर ली है, और 2026 में ही, जबकि टारगेट 2027 में था, लेकिन 2026 में ये हमारी कोशिश होगी कि 1,60,00,000 इन 20 जिलों में आदिवासी बाहुल इलाके में जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के रोग होने की संभावना होती है, हम अपने पूरा स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले वर्ष बड़वानी में आपको आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आपका आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ध्यान था, और इसलिए इस विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में हमारे बीच में आई हैं, आपका स्वागत करते हुए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब माननीय राष्ट्रपति महोदया को सम्मानित करेंगे। और आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की एक ताम्र प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति को अर्पित की गई, और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को एकात्मता की प्रतीक इस प्रतीक किया है। माननीय राज्यपाल जिन्होंने लगातार सिकल सेल की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को माननीय उप मुख्यमंत्री

0: राजेंद्र शुक्ल द्वारा भगवान शिव की मूर्ति भेंट की जा रही है और उपस्थित सभागार में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको बता दें कि सिकल सेल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सन 2047 तक सिकल सेल रोग को पूरी तरह खत्म करने या कम करने का लक्ष्य रखा है। इस आनुवांशिक बीमारी से आदिवासी अंचल बहुत प्रभावित हैं। इस अभियान की शुरुआत का जो घोषणा हुई सन 2023 के और एक वीडियो के माध्यम से सिकल सेल अभियान के बारे में जानकारी दी
1: बनेगा और उस मिशन को मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आत्मसात किया गया है। प्रदेश के जनजातीय जनमानस के बड़े वर्ग में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखी जा रही थी जो है सिकल सेल एनीमिया।
2: मैं जब 6-7 की थी तब डायग्नोस हुआ कि मुझे सिकल सेल है। जब मैं MBBS कर रही थी उस टाइम पर पता चला कि ये सारी ये बीमारी मेरे पूरे परिवार को है।
3: जैसे मैं जब 7 साल का था जब मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी है।
2: पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे परिवार में इतनी अवेयरनेस थी।
3: काफी चीजें रुकाव आए जीवन में, ऐसा नहीं कि कभी बहुत पेन हुआ कभी दर्द हुआ मुझे, फिर भी मैं लड़ता रहा।
2: ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि फैमिली से फैमिली मेंबर में बढ़ती जाती है।
3: नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड होता है वो सर्कल शेप का होता है और जो हम सिकल सेल जिनको होता है उनका ब्लड एक सिकल आकार का होता है जिसे हम हसिया बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉट होने के कारण हमारे ज्वाइंट में पेन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है।
2: सिकल सेल में हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस होता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर लें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेस मत लें और साथ ही आप अपनी रेगुलर मेडिसिन लें, टाइमली डाइट लें और अपनी नींद पूरी करें। कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो।
1: सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सिकल सेल की जांच, परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यही सेवाएं मरीजों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती हैं।
2: जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ MP गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के वजह से मुझे फ्री में सिकल सेल की दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया और फॉलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो निःशुल्क स्क्रीनिंग सारी जाँचें करवा रही है, पेशेंट की सिकल सेल की जाँच जो भी HPLC स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सारे निःशुल्क कर रही है, दवाइयाँ वितरित कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है इस बीमारी को लेकर कि आपको इसके साथ कैसे सर्वाइव करना है। मैं सभी सिकल सेल वॉरियर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह देखिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: सही जानकारी और नियमित उपचार ही सिकल सेल प्रबंधन की कुंजी है।
4: जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी।

की यही पुकार सिकल सेल मुक्त हो देश। सिकल सेल रोगी की स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित ये वीडियो हमें संदेश दे रहा था कि किस प्रकार हम सिकल सेल से जागरूक हों और जागरूकता हमें सिकल सेल को समाप्त करने की ओर ले जाए। और अब लक्षित समूहों में 100% स्क्रीनिंग पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों का सम्मान माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत जामिया की सरपंच, दाबिया की सरपंच यहां पर मंच पर उपस्थित हो रही हैं और उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान उनके अथक प्रयास का कारण है, उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनके लिए है।

0: ग्राम पंचायत
1: कुम्हारखेड़ा की सरपंच
0: और अब ग्राम पंचायत कुम्हारखेड़ा की सरपंच यहां पर उपस्थित हो रही हैं और उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित है और समूचे पांडाल में उपस्थित जन समूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया है और स्वागत के क्रम में अब अगली स्वास्थ्यकर्ता यहां पर उपस्थित हो रही है मंच पर और माननीय राज्यपाल द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं इन प्रतिभाओं से जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनूठा कार्य किया है, बहुत काम किए हैं और उन्होंने न केवल अपनी पंचायत का 100% स्क्रीनिंग की है लोगों की सिकल सेल जागरूकता के दिशा में और अब वहां पर समग्री सामग्री उपलब्ध करवा कर उनका जीवन खुशहाल बना रहे हैं और सम्मान की अगली कड़ी में और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं।
2: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओंकार महाराज के इस प्रांगण में मां नर्मदा की कृपा से सच में ये अमृत कुंभ हो रहा, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल साहब, आप लगातार हर क्षेत्र के लिए हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं, लेकिन खासकर सिकल सेल के इस पूरे अभियान में आपकी लगातार सक्रियता के कारण से हम आज तक के सारे स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड तोड़ करके सच में एक बड़े पुण्य के काम को में लगे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर इस निमाड़ अंचल की हमारी सारी जनता दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी नमस्कार करता हूँ। नर्मदा महारानी की, ओंकार महाराज की। आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी का नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम अब पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है कि एक तरफ सादगी शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे तब मंगूभाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे, उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है, कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल

0: केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं, जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है, आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूँ तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पा लें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम, जय श्री राम।
1: माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्बोधन में उनका एक संकल्प नजर आया और वो संकल्प है सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक पूरी तरह से समाप्त करना और हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना, उन्हें स्वस्थ बनाना, यही माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है। और अब उस संकल्प को साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंच की तरफ पढ़ रहे हैं और वे अब संबोधित करेंगे।
2: सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस ओंकारेश्वर के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री जनजातीय विभाग श्री कुंवर विजय शाह जी, मंत्री आयुष विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सभी अधिकारी गण, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रदेश में बल्कि सारे विश्व में आज सिकल सेल दिवस मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी उपस्थिति से प्रदेश की जनता गौरवान्वित हुई है। प्रदेश में विश्व सिकल

से दिवस का आयोजन जन जागरूकता, जन भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। मान्य महोदया, सिकल रोग एक समस्या बल्कि जनजातीय समुदाय सामाजिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 को जनजातीय समाज के सम्मान एवं उत्थान को नई दिशा देने की पहल जनजातीय गौरव दिवस के साथ मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन का मिशन प्रारंभ किया था। प्रसन्नता के

0: प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 में शुभारंभ किया। जनजातीय समाज यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में इस गंभीर अनुवांशिक बीमारी की चुनौतियों को समझते हुए देश भर में सिकल सेल उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन बनाया है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच हो गई है। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 के एंड में हम जांच पूरी कर लेंगे, बाद में दवाई की जो बात है वो दवाई हम करते रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और जनजातीय समुदाय के उत्थान और स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता के प्रयासों से आज पूरा देश विशेषकर जनजातीय समाज बीमारी से प्रति जागरूकता है और सतर्कता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2023 में जब इस शहडोल में ये शुरुआत किया प्राइम मिनिस्टर ने, तभी से सारे देश में ये उन्मूलन का काम चल रहा है और अभी तक सारे हिंदुस्तान में 7,21,00,000 से भी ज़्यादा जांच हो गई है। मैं समझता हूँ कि जनजाति समाज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उस रहती जनजाति समाज के एक अंग होते हुए उनका और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में सिकल सेल एलोपैथी दवाइयाँ के साथ आयुर्वेदिक दवा का उपयोग भी प्रयोग भी शुरू किया है जिसके प्रारंभिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। आपकी गरिमा भाई उपस्थिति में सिकल सेल रोगियों की अपील करूंगा कि रोग उपचार में एलोपैथी दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग करें, आपको जरूर उसमें फायदा मिलने वाला है। स्क्रीनिंग के बाद दिए गए डिजिटल कार्ड, जीनेटिक कार्ड, यहाँ बार बार दोहराया है कि कार्ड वैवाहिक संबंधों के लिए ऐसे समझो जन्म कुंडली है, उसके समान इसका विवाह संबंधों में पूर्व मिलान जरूर करें। यदि युवक और युवती दोनों को सिकल से रोग पीड़ित है तो शादी नहीं करें, क्योंकि यह पाया गया है कि ऐसे दंपति की संतान में जन्म से सिकल से रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी व्यस्तता के कार्यक्रम भी समय निकालकर आप यहाँ आए, मैं हृदय से दिल की गहराई से यह आभार आपका मानता हूँ, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर ने यह लॉन्चिंग किया, उपराष्ट्रपति भी डिंडोरी आ गए और आज हम ओंकारेश्वर में आपको यहाँ उपस्थित है के हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि तीनों नेता ये सिकल सेल के विश्व सिकल सेल दिन में उनकी उपस्थित रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: माननीय राज्यपाल महोदय के उद्बोधन के बाद अब वो अवसर आ चुका है जब उपस्थित यहाँ की जनता माननीय राष्ट्रपति महोदय को सुनना चाहती हैं और उसी के तारतम्य में अब बहुत शीघ्र माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सभी को संबोधित करेंगी और उनके संबोधन के लिए समूचा पांडाल संयमित और अनुशासित होकर उन्हें सुनने के लिए आतुर हो रहा है। मंच पर माननीय राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और बहुत जल्द हमें संबोधित करेंगे और अब वो डेस्क की तरफ बढ़ रही हैं और कुछ ही क्षणों में हमें संबोधित करेंगी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमें संबोधित कर रही हैं।
2: इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया दिवस के इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश

राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, कुबेर विजय शाहजी और नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है, 7.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है, इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, आनुवंशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए हैं। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दवा भी रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दवा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुख्य के रूप में आकलन सामने आया है, सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातीय पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही थी जो स्क्रीनिंग किया गया है, 17 राज्य 17 स्टेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज़्यादा पाया गया है। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला
कि भारत के जनजाति

भारतीय समाज सिकिल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर ये राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदार की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे आंतरिकता से सहित मिशन मोड में इस चीज़ को लिए हैं, मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं, उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं सभी इसी मंच से मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जैसे उन्मूलन किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है। इसके लिए दवा सामने आया है, उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकिल सेल नाम की कोई बीमारी और आगे भी नहीं आया गया। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूँगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज़ को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लीजिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक बाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। बाहकों की इतनी बड़ी संख्या से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकिल सेल के बाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश बाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। संतोष की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिशन मोड में पिछले कुछ वर्षों में सिकिल सेल से जुड़े रोगियों और बाहकों की पहचान के साथ साथ उनकी समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी संज्ञान में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकिल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकिल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।

0: दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातियों क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी किया गया है। इन सार्थक पहल के लिए मैं प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी प्रदेशों के सम्मेलन शक्ति और सक्रियता से हम वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल संबंधी रोगी के उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। देश में जनजातीय समुदाय के लोगों के सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। मैं आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय महामहिम राष्ट्रपति का संबोधन हुआ और अब राष्ट्रगान की धुन बजाई जा रही है और समूचा पंडाल खड़े होकर राष्ट्र का सम्मान कर रहा है।

0: और इसी के साथ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत विश्व सिकल सेल दिवस 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका कि मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से सीधा प्रसारण हुआ, उसकी क्रिएटिव टीम में हमारे यहाँ उपस्थित रहे आकाशवाणी इंदौर और खंडवा की कार्यक्रम एवं तकनीकी टीम, जिसमें शामिल रहे नानक सिंह बंडोत, नीरज पाटिल, वैभव मंडलोई, नीरज कुलकर्णी, विद्याधर मुले, मुकाम सिंह चौहान, चिन्मय दीक्षित और असीम कैथवास, और हमारे इस समग्र प्रसारण के लिए मार्गदर्शन एवं नियोजन कार्यक्रम प्रमुख राजेश एवं उपनिदेशक अभियांत्रिकी अभय कुमार गुप्ता का रहा। और अब मैं मुकाम सिंह चौहान आपको स्टूडियो लिए चलता हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संबोधन का सीधा प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कल ख्वाब में देखा सखी मैंने पिया का गांव रे, कांटा वहां का फूल था और धूप जैसे छांव रे। सबसे सरल भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, बोली जो नैना बावरे समझे, जो सैया सांवरे। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में मैं नीतिका वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं, और चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ।
3: जी नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूं। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
2: संतोष जी, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? सबसे पहला फोन कॉल आपका है।
3: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और जो हमारे खास करके इंजीनियर सर रहते हैं, इतनी तन्मयता से कार्यक्रमों का संचालन करवाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो फोन कॉल जाते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश में, बहुत ही साफ और स्पष्ट शैली में जब प्रसारित होता है, तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी।
2: जी हाँ, हमारे इंजीनियर्स की मेहनत होती है, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स की मेहनत होती है, हम अनाउंसर उसको प्रेजेंट करते हैं, और आप श्रोता जो तनिनता के साथ में फोन लगाते हैं, आप लोगों से जब बात होती है और आप लोगों के विचार हम जानते हैं, तब जाके हमारा एक कार्यक्रम पूर्ण हो पाता है। तो सबकी मेहनत इसमें होती है, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे संतोष जी?
3: मैम एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मूवी का नाम है जुदाई। हम प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया,

0: हाँ नमस्ते
1: नमस्कार मैडम,
0: जी
1: मैं तुलसीराम व्यास बोल रहा हूँ, मालेगांव से है।
0: जी
1: और आज हमारी बिटिया की शादी है, उसका नाम है ज्योति, उसकी शादी है। आपको पूरे परिवार को, आकाशवाणी परिवार को निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ। आज उसकी शादी है, आज उसकी विदाई भी है।
0: जी जी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत बधाई। जी जी जी
1: हाँ तो नितिका जी, आपको आपके परिवार सहित उसके शादी में आना है और बच्ची को आशीर्वाद देना है आपको।
0: हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हमारी
1: हाँ
0: ओर से बिटिया रानी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई
1: ज्योति का
0: आपके पूरे
1: नाम है,
0: परिवार को।
1: आज बहुत भाग्य से उसकी शादी है और आज ये फोन लग गया मेरा, बहुत अच्छी बात हो गई। परिवार आपका खुश रखे।
0: जी जी ईश कृपा बरसे बिटिया पर, खुश रहे उसके नए जीवन में, जो उसका पदार्पण होगा, उसका जो स्वागत होगा, हम उसके लिए भी शुभकामनाएं भेजते हैं। आज कौन सा गीत
1: और
0: सुनना चाहेंगे तुलसीराम व्यास जी आप?
1: बाबुल की दुआएं लेती जा,
0: जी जी
1: तुझको सुखी संसार मिले।

0: दीदी,
1: नमस्ते, किससे बात कर रहे हैं हम?
0: मैं बरेला से बोल रही हूँ, जबलपुर बरेला से वंदना उपाध्याय। फोन बहुत खुशी हो रही, इतने
1: हाँ,
0: दिनों से परेशान हूँ, लग ही नहीं रहा फोन।
1: हमारे बहुत
0: आप
1: से
0: कौन बोल
1: श्रोता।
0: रही हैं दीदी?
1: जी, मैं नीतिका वर्मा
0: बहुत
1: जी।
0: अच्छा लगता है, रेडियो तो एक ऐसी चीज, और आप लोग जब प्रोग्राम देते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल
1: और आप लोग
0: गया।
1: जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, हम लोगों को
0: हाँ,
1: भी
0: मैं पूरा
1: बहुत।
0: सुनती हूँ, आप बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाते हैं।
1: आज आपकी
0: ठीक है, मैं
1: कौन?
0: आपको गाना बता देती
1: हाँ, बताएं
0: हूँ।
1: बताएं।
0: मुझे वो अखियों के झरोखे में सुना

0: नमस्ते मैडम
1: नमस्ते।
0: जी फोन लगा के सुना, मैं लगाया कार्यक्रम में, इंदौर से मुखर्जी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका।
0: ये तीसरा कॉल है मैडम मेरा यहाँ भोपाल में।
1: जी
0: मुझे
1: जी जी पूरब और पश्चिम फिल्म की आरती।
0: हाँ जी
1: जी जी जी बिल्कुल लीजिए आपके रेडियो सेट पर,
0: थैंक यू मैडम।
1: आपका दिन शुभ हो।

0: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
1: जी,
0: और आपका शुभ नाम?
1: जी मेरा नाम नीतिका वर्मा है। जी
0: नीतिका जी, कैसी हैं आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और आपके लिए भी मंगल कामनाएं करते हैं। फूलचंद जी का निमंत्रण है कि सभी खजुराहो आएं घूमने के लिए और उनके शहर छतरपुर को भी जरूर घूमें, है ना
0: बिल्कुल घूमे। और मैं और भी बता दूं आपको कि और
1: जी।
0: भी जगह घूमने लायक है, जैसे हमारा जो रनेपाल, जो कैन नदी है उसका जो रनेपाल है
1: हाँ
0: वो भी बहुत दर्शनीय स्थल है, घूमने लायक है। वो विदेशी पर्यटक जाते भी है घूमने के लिए। पन्ना टाइगर है और हमारी खजुराहो से जस्ट बगल में बागेश्वर धाम है।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फूलचंद जी, लेकिन आज हम आपको गीतों की सवारी करवा रहे हैं। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: जान की कसम कि बरसात हो।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। सागर
0: परिचय
1: से बोल रहे,
0: दीजिए।
1: पंडित शिवनारायण तिवारी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सागर से।
0: जी, बहुत स्वागत है आप।
1: आप कौन?
0: जी, मैं नीतिका वर्मा।
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। आप आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे शिवनारायण जी?
1: आप सुनाना आज आई मिलन की रात का, कसम से, कसम से वो रब्बर।
0: और आपका दिन मंगलमय हो।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: मैं हसीना बी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से।
1: बहुत स्वागत है आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: अच्छे हम भी।
1: और इंदौर में अच्छा मौसम है, खिला खिला।
0: हाँ अच्छा, खिला खिला मैडम, मौसम सुहाना हो रहा है मैडम, थोड़ी गर्मी से राहत मिली है।
1: हाँ, हेलो।
0: अभी अभी मतलब नाश्ता वास्ता करके निपटे थे और आपको कॉल लगा रहे थे तो लग गया।
1: हाँ, आज आपसे बात होनी थी ना हमारी।
0: जी।
1: चलिए, आज फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: तवायफ का सुना दीजिए। बहुत देर से दर पे आँखें लड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत

0: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
1: जी, बाबू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: धन्यवाद दीदी आपको।
1: कौन सा गीत आज आपका अनुरोध रहेगा?
0: दीदी आज हमको सुनवा दी फिल्म बाबी का एक गीत है, अखियों को रहने दो, अखियों के आसपास गीत है। इजाजत देंगी तो दो लाइनें भी कहना चाहूंगा
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: कि बेचता यूं नहीं आदमी ईमान को, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, और भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पे इंसान को, और सब नमी ओठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को।
1: बहुत अच्छा, चलिए आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, बहुत धन्यवाद, आपने फोन भी किया।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में विश्व सिकल सेल दिवस पर आज खंडवा जिले में स्थित पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। सिकल सेल रोग उन्मूलन की दिशा में प्रदेश में नेशनल सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से स्क्रीनिंग, ट्रैकिंग और सतत डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों की सिकल सेल जाँच की गई, साथ ही 3700 सिकल मित्रों को जागरूकता और सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि अगस्त 2025 से शुरू हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 63,00,000 से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने कहा है कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहता है, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के लाभों की अपेक्षा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के अंतिम मुकाबले के लिए तेज गेंदबाज हर्षिता राणा को टीम में चुना गया है। ये मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम का आगाज क्रिमिनल फिल्म के गीत के साथ, जिसे आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत इंदिवर का है और संगीत है एमएम करीम का, और पसंद आप सभी श्रोताओं की। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म क्रिमिनल का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साथिया का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं साधना सरगम, मुर्तजा और कादिर ने। गीत गुलजार का है और संगीत है AR रहमान का। लीजिए सुनिए।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत दुश्मन फिल्म से, लता मंगेशकर के साथ कुमार सानू की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है उत्तम सिंह का। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, दतरंगी भाग से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पांचोलिया ने। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं दुश्मन फिल्म का ये गीत।

है जतिन ललित का। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉविन ने। इसी गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने।

आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद है।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भुवन मोहिनी का भाग एक।
1: विंध्य वसुंधरा के दैदीप्यमान लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय पंडित सिद्ध विनायक द्विवेदी का जन्म 9 जुलाई सन 1912 को रीवा जिले के एक गांव बिछिया भड़रा में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगा प्रसाद द्विवेदी और माता का नाम मनका देवी था। उनकी शिक्षा भी रीवा में ही हुई थी। उन्होंने सन 1929 में अंग्रेजी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिद्ध विनायक द्विवेदी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने रीवा और आगरा की जेलों में लगभग 8 साल बिताए। श्री द्विवेदी ने अपने साहित्य के माध्यम से सामंतशाही और राजतंत्र का जोरदार विरोध किया था। जनमानस में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना और सामाजिक व आर्थिक समता की भावना को जगाने का उनका प्रयास अद्वितीय था। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी बुद्धिजीवियों के लिए एक मिसाल बनी। आजीवन सांसारिक वितृष्णा का विषपान करने वाले पंडित सिद्ध विनायक द्विवेदी ने 17 सितंबर 1959 को अखाड़ घाट रीवा स्थित एक मंदिर में अपनी अंतिम सांसें लीं।

0: राजकुमार, राजकुमार विजय श्रवा।
1: कौन? अरण्यक?
0: और कौन आ सकता है आपकी संगशाला में मेरे अतिरिक्त?
1: आओ मित्र, अभी तुम जग रहे थे?
0: क्या करता, रंगशाला की खिड़की से तीव्र प्रकाश जो आ रहा था।
1: अपनी खिड़की बंद कर लेते।
0: नींद फिर भी ना आती।
1: क्यों?
0: अब रात्रि के तीसरे प्रहर तक अपने युवराज मित्र जागरण कर रहे हों तो नींद किस दृष्ट सेवक को आ सकती है? अरे वाह, क्या चित्र बनाया आपने! धन्य हो मित्र, धन्य हो। यानी कि 3 मास की अनवरत तपस्या के बाद भुवन मोहिनी का चित्र पूर्ण कर ही लिया आपने।
1: हाँ अरण्यक, परंतु मुझे लगता है कि साक्षात भुवन मोहिनी के सामने उसका ये चित्र कुछ भी नहीं। मैं क्या, कोई भी चित्रकार उसका चित्र नहीं बना सकता।
0: युवराज, इस संसार में आपसे बढ़कर कलाकार और कलापारखी कौन होगा? अब जब आप ही ऐसा कह रहे हैं तो सच ही मानता हूं, परंतु एक बात मेरी भी सच मानिए, आपकी प्यास भुवन मोहिनी के चित्र को देखकर नहीं बुझेगी।
1: तुमने ठीक कहा मित्र, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस दिन जब मेरे पिताश्री महाराज दुमत सेन भरी राज्यसभा में भुवन मोहिनी का नृत्य देख रहे थे, तो वो संभवतः भाप गए थे कि भुवन मोहिनी सामंतों की सभा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए नृत्य कर रही थी।
0: और इसी अपराध के कारण उन्होंने राज नर्तकी भुवन मोहिनी को धारा नगरी से निष्कासित कर दिया।
1: हाँ, और तभी से हम उससे मिलने के लिए व्याकुल हैं। अरण्यक, ये वही दृश्य है जिसे मैं अपनी आंखों से विस्मृत नहीं

0: नहीं कर पा रहा हूं। जब भुवन मोहिनी अंतिम बार मुझसे मिलने आई थी।
1: आपसे मिलने आई थी? कब? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया।
0: रात्रि के चौथे प्रहर में, यहीं इसी कक्ष में, मैं यही चित्र बनाने में तल्लीन था कि तभी कानों में ध्वनि आई।
2: राजकुमार।
0: भुवन मोहिनी, तुम और पुरुष वेश में?
2: क्या करती, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय नहीं था स्वामी, क्षमा करना। जाते जाते तुम्हें देखने की चाह को नहीं दबा सकी।
0: क्षमा तो मैं तुमसे चाहता हूं भुवन मोहिनी, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। परंतु भुवन मोहिनी, तुम ये भी मान लो कि तुम्हारे बिना आज से ये धारा नगरी का राजकुमार सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा।
2: नहीं नहीं जीवनधन, मुझ जैसी तुच्छ नर्तकी के लिए ऐसा कठिन व्रत लेना महान भूल होगी आपकी। राज ऐश्वर्य से युक्त भोग विलास ही आपके श्रृंगार है, सन्यास नहीं।
0: मुझे नहीं चाहिए भोग विलास और राज ऐश्वर्य, मैं तो अपने जीवन में भुवन मोहिनी को प्राप्त करने की मधुर आकांक्षा पाल चुका हूं। तुम सोचती हो कि तुम मेरे दृष्टिपथ से दूर बसोगी और मैं भोग विलास में डूबकर तुम्हें भूल सकूंगा? असंभव, असंभव है भुवन, असंभव। प्रिय, राजाज्ञा का विरोध करने की शक्ति आज मुझ में नहीं है, किंतु मुझ में ऐसी राजाज्ञा के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं है। समय इसका उत्तर देगा। आज मैं विवश हूं, मौन हूं, प्रेम पीड़ित हूं।
2: मेरे राजकुमार
0: भुवन, ये लो, मैं अपना मणिमाल तुम्हें और अपने प्रेम को अर्पित करता हूं।
2: ये क्या राजकुमार?
0: प्रिय, तुम्हें मेरे इस उपहार को कभी भी अपने वक्षस्थल से क्षण भर के लिए भी दूर न करना, अन्यथा मेरे प्रेम सिक्त हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंचेगी और मैं समझूंगा कि मेरे मणिमाल को अपने हृदय से दूर करके मेरी सबसे बड़ी उपेक्षा की है।
2: देव, आपके द्वारा प्रदान किए गए मणिमाल को मैंने स्वीकार किया, किंतु इस मणिमाल की शोभा मुझ जैसी क्षुद्र नर्तकी के हृदय प्रदेश को विभूषित करने में बढ़ेगी नहीं, अभी तो घट जाएगी। यदि आप मेरी प्रार्थना माने तो मेरे इस मणिमाल को अपने ही वक्षस्थल में सुशोभित दिखने दें। क्या मेरी इस कामना को मेरे देवता पूर्ण नहीं करेंगे?
0: नहीं भुवन, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं।
2: मैंने लिया ना, हृदय में रख लिया, परंतु मेरी ओर से अपने पास ही रखने की मेरी इस कामना को पूर्ण करिए मेरे प्रिय।
0: अच्छा, ठीक है, यदि तुम्हें मेरे हृदय प्रदेश पर इसे अलंकृत देखने में सुख मिलता है तब मैं इसे तुम्हारा उपहार समझकर स्वीकार करूंगा। पर ये तुम मान लो कि इस हार पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं और ना ही स्वामित्व।
2: मुझे आपने आज बहुत सुख दिया मेरे राजकुमार, कैसे बीतेगा समय आपके बिना नहीं जानती, कैसे जी पाऊंगी मैं, बस आपको देखने की आस ही जलाई रखेगी मुझे।
0: भुवन,
2: मेरे विजय श्रवा, अब मेरे चलने का समय हो गया है, क्या आप मुझे छोड़ने नहीं चलेंगे?
0: अवश्य चलूंगा भुवन, परंतु तुम जाओगी कहां?
2: जहां भाग्य ले जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्रेम मेरे साथ छाया की भांति सदैव रहेगा, मेरी सुरक्षा में।
0: भुवन,
2: विजय श्रवा, अब चलिए, अन्यथा सम्राट को संदेह हो जाएगा।
0: हाँ हाँ, चलो।
1: प्रणाम युवराज।
3: सारथी, भुवन मोहिनी को कोई कष्ट ना हो, ध्यान रखना।
1: आज्ञा युवराज।

0: जाओ प्रेत में, प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारा यही राजकुमार इसी रथ से तुम्हें अवश्य बुलवाएगा।
1: उसी पल की प्रतीक्षा में मेरा समय व्यतीत होगा युवराज।
0: बस वही दृश्य मेरी आंखों में बस गया अरण्यक, भुवन मोहिनी की वो कातर आंखें, वो प्यास, वो तड़प।
2: अब आपको सो जाना चाहिए मित्र, क्योंकि अब मुझे भी नींद आने लगी है।
0: अवश्य अरण्यक। अरण्यक?
2: हाँ मित्र।
0: इस चित्र को कल सुबह तुम रंगशाला से उठाकर मेरे एकांत शयनागार में सजा दोगे?
2: क्यों नहीं, इस चित्र के लिए उचित स्थान तो वही है।
0: किंतु ध्यान रहे, चित्र रास्ते में अनावृत ना हो। मैं पिछले 3 महीनों से भुवन मोहिनी का चित्र बना रहा हूं, यह रहस्य तुम्हारे सिवा किसी को ज्ञात नहीं है।
2: और ना ही ज्ञात होगा, आप आश्वस्त रहें, अब तो आज्ञा है मित्र।
0: हाँ जाओ।
2: आभारी हुआ।
3: राजकुमार।
0: हाँ मां।
3: क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल पर बसंत की बेला में ये पतझड़ जैसा क्यों है?
0: कुछ नहीं मां, बस यूं ही।
3: मुझे बताओ पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं देख रही हूं आजकल तुम प्रसन्न नहीं रहते।
0: मां मेरी प्रसन्नता खो चुकी है, मैं किसी अभाव में पल पल खुल रहा हूं, किंतु समझ नहीं पा रहा हूं कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए।
3: मैं जानती हूं, राजकुमार विजय श्रवा को चाहिए भुवन मोहिनी, एक वैश्या, एक नर्तकी। क्यों, ठीक है ना
0: मां?
3: तुम मेरे एकमात्र लाडले हो, धारा नगरी के भावी शासक हो और इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। छी, तुम्हारे पद और प्रतिष्ठा के लिए यह कैसी अशोभनीय स्थिति है कि तुम एक सिंघनी की कोक से जन्म लेकर उच्छिष्ठा श्रृंगाली के प्रेम में मतवाले हो रहे हो। देश देश की राजबालाएं राजकुमार विजय श्रवा की राजमहिषी बनने की मधुर आकांक्षाएं पालकर जब तप कर रही हैं, पूरे साम्राज्य से अपनी अपनी राजकुमारियों के लिए अनेक देशों के सम्राट और खंड राज्यों के नरेश वर याचना कर रहे हैं, किंतु स्वयं राजकुमार मोतियों का हार ठुकराकर सीप की माला पहनने को व्यग्रह है।
0: मां,
3: मैं समझती थी कि राजकुमार अपनी एकांत रंगशाला में बैठकर वीणा पाणी सरस्वती की आराधना करते हैं, किंतु जब मैंने भुवन मोहिनी का चित्र देखा तो अवाक रह गई। सम्राट ने जब आदेश निकाला कि भुवन मोहिनी को धारा नगरी से निर्वासित किया जाता है तो मुझे आश्चर्य हुआ था। कारण जानने की प्रार्थना जब मैंने की तब सम्राट ने स्वयं बताया कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, किंतु उस समय मैं सम्राट की बातों में विश्वास नहीं कर सकी थी। उल्टे मैंने सम्राट से निवेदन किया कि अकलुष राजकुमार पर ऐसे लांछन लगाना मेरे दूध और कोक का अपमान है, परंतु इसके पश्चात मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें एकाग्रता पूर्वक भुवन मोहिनी का चित्र बनाते हुए देखा। राजकुमार, क्या तुम बता सकते हो कि विगत 3 मासों से तुम मेरे समीप क्यों नहीं आए? विगत 3 मासों में क्यों तुम आखेट में वन जाना भूल गए? क्यों राज्यसभा में उपस्थित लोगों ने तुम्हारी अगणित बार प्रतीक्षा की? क्या महोत्सवों के प्रति तुम्हारे हृदय का संपूर्ण आकर्षण अब नहीं रहा? क्यों तुम्हारे असमय वैराग्य के प्रति धारा नगरी की प्रजा में हीनतम आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हुआ करती हैं? क्या तुमने अपने मौन का कोई उपयुक्त कारण खोज निकाला है अब तक? मेरे दूध की लाश तुम्हारे हाथ है, मैं जाती हूं, तुम्हारा अधिक समय व्यर्थ नहीं करूंगी, किंतु जाते जाते तुमसे यह मांग करके जाती हूं कि एक पतित पुत्र की माता कहलाने के दोष से

0: मित्र कितनी देर हो गई थी? आपको गए हुए कहां रह गए थे?
1: बहुत हो गया अरण्यक, शीघ्र ही मेरी दीर्घ यात्रा का प्रबंध करो। ठीक अर्धरात्रि के समय मैं धारा नगरी छोड़ दूंगा। अभी जाकर रथ सजाओ और सेवकों को चलने का आदेश दो।
0: जो आज्ञा मित्र, परंतु पहले भोजन तो ग्रहण कर लीजिए।
1: नहीं अरण्यक, धारा नगरी में अब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब सारा प्रबंध हो जाए मुझे बता देना। हां, ध्यान रहे यात्रा का भेद किसी को ज्ञात ना हो। साथ में चलने वाले सेवकों को भी आदेश दे दो कि वो इसकी चर्चा किसी से ना करें।
0: जी बहुत अच्छा।
1: और हां, भुवन मोहिनी को मेरे साथ बिठाना।
0: क्या?
1: उनके चित्र को।
0: हां हां, क्यों नहीं, अवश्य बिठाऊंगा। उन्हें नहीं बिठाऊंगा तो क्या मैं बैठूंगा? मित्र, सारथी के लिए कोई आज्ञा है क्या कि घोड़ों को किस दिशा में दौड़ाए?
1: कोई निश्चित मार्ग नहीं है अरण्यक, जिधर उसके घोड़े जाएं, जाने दो।
0: चलते रहो सारथी, नियति का क्रूर विधान जिधर ले चले चलते रहो। ठीक है अरण्यक।
1: अरण्यक, राजमाता ने आज मुझे बहुत जली कटी सुनाई।
0: मैं समझ गया था मित्र, अवश्य आपका हृदय उन्हीं की बातों से विगलित हुआ होगा।
1: और अब मैं इसका प्रतिकार लूंगा।
0: अपनी मां से?
1: हां, आजीवन अविवाहित रहकर।
0: मित्र,
1: और इतना ही नहीं, निर्वासित की भांति वनवासी जीवन भी व्यतीत करूंगा।
0: आश्चर्य है मित्र।
1: किस बात का?
0: जब भुवन मोहिनी को निर्वासन का आदेश मिला था तो उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसके प्रश्न पर राजकुमार को भी निर्वासित होना पड़ेगा।
1: हैं? ऐसा कहा था उसने?
0: हां मित्र, ये बात मैंने उसकी एक दासी से जानी थी।
1: कैसे कैसे वो विश्वास पूर्वक कह सकी कि एक दिन मुझे भी निर्वासित होना पड़ेगा?
0: ये तो मैं नहीं बता सकता मित्र, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी ने एक तुच्छ नर्तकी के घर जन्म तो लिया था, परंतु वो न जाने कितने मानवीय गुणों से भरपूर यवना थी। संगीत और नृत्य में प्रवीणा तो थी ही, सुना है कि वो वेदांत, दर्शन, न्याय, मीमांसा और राजनीति जैसे शुष्क और गहन विषयों में भी पारंगत थी।
1: हां यह सत्य है अरण्यक कि भुवन मोहिनी की माता उसे शिक्षिता बनाने के लिए विद्वानों का विशेष आदर करती थी और प्रायः उनकी आर्थिक सहायता भी बहुत करती थी।
0: तब तो ऐसा ही होना था मित्र।
1: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी का पता लगा सकते हो?
0: इसमें क्या पता लगाना, मुझे पहले से ही ज्ञात है।
1: पहले से ही ज्ञात है?
0: हाँ।
1: कहाँ है वो?
0: इंद्रप्रस्थ में।
1: इंद्रप्रस्थ में?
0: हाँ, मुझे पता चला था कि निकाले जाने के बाद भुवन मोहिनी राजस्थान की ओर गई थी। वहां जैन आचार्यों ने उसे इंद्रिय निग्रह और त्याग की शिक्षा दी, किंतु ये भी सुनने में आया कि व्रत, उपवास, शमन, दमन आदि करने वाले आचार्य भी स्वयं उसकी रूप शिखा पर पतंगे की भांति भस्म होने लगे। तब से तो उसे ज्ञान उपदेश देने वाले साधुओं से घृणा हो गई थी। मित्र, भुवन मोहिनी यह अवश्य चाहती थी कि उसे कोई नर्तकी न समझे, सम्मानित गृहस्थ नारी की भांति जीवन बिताना चाहती थी, परंतु दुर्भाग्य क्या ऐसा ना कर सके। इसीलिए अब उसने एक आश्रम बना लिया है जहां वो राग रागनियों को सिद्ध करने में तल्लीन है।
1: आश्रम? तो क्यों ना हम उसकी खोज में इंद्रप्रस्थ की ओर ही चलें?
0: क्यों नहीं,
1: परंतु ध्यान रहे मुझे कोई भी धारा नगरी का राजकुमार ना समझे।
0: ये तो बहुत कठिन काम है मित्र।
1: कुछ भी कठिन नहीं है, मैं अपना नाम बदल लूंगा और मैं चाहता हूं कि वहां मुझे सभी लोग श्रेष्ठी कहकर संबोधित करें। ठीक रहेगा ना मित्र?
0: अब आपने निर्णय ही ले लिया है तो सब ठीक है। चलो भाई सारथी, इंद्रप्रस्थ की ओर चलो।
2: ठीक है रणिक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, में भुवन मोहिनी का भाग एक। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बहुआयामी उपलब्धियों के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। सिकल सेल रोग उन्मूलन की दिशा में प्रदेश में नेशनल सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से स्क्रीनिंग, ट्रैकिंग एवं सतत डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों की सिकल सेल की जांच की गई है। इसके साथ ही 3,700 सिकल मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगस्त 2025 से शुरू हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 63,00,000 से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें 30% महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, एआई आधारित पाठ्यक्रमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षित और सक्षम युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं और युवा आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के अंतिम मुकाबले के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में चुना गया है। ये मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

व्यक्तिगत पंक्तियों के साथ आप सभी श्रोता बहनों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। तो स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो सखी प्रतिभा चतुर्वेदी का सा स्नेह नमस्कार। बहनों, विश्व की आधी आबादी कहे जाने वाली नारी शक्ति ने जहाँ घर की चार दीवारी से बाहर दहलीज को पार कर बाहरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है, वहीं आज महिलाएं कार्य क्षेत्र में दिन हो या रात अपने कार्य को मुकम्मल कर रही हैं। तो वहीं समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण महिला के मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव सदा रहता है। रात बेरात कहीं जाने पर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और अपराध बोध से ग्रसित रहती हैं। बहनों, महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा में केवल बलात्कार या शारीरिक उत्पीड़न ही शामिल नहीं है, बल्कि बिना सहमति के किया गया कोई भी अवांछित यौन व्यवहार, कार्यस्थल पर अनुचित टिप्पणियां, डिजिटल हिंसा जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न और पीछा करना भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बहनों, ये समस्या लिंग, उम्र या स्थान की सीमाओं से परे पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या से उबरने के लिए यौन हिंसा उन्मूलन एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समता मूलक समाज के निर्माण की सबसे अनिवार्य शर्त है। ये केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर विनाशकारी परिणाम लाता है। इसके उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन को यानी 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस मुख्य रूप से संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले यौन शोषण और युद्ध के हथियार के रूप में यौन हिंसा के प्रयोग को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून 2015 को की गई थी। ये तारीख 19 जून 2008 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव सन 1820 को मान्यता देती है, जिसमें युद्ध के हथियार के रूप में यौन हिंसा की निंदा की गई थी। संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने इन अपराधों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक अपना जीवन समर्पित किया। तो बहनों, ये तो हमने आपसे बात की अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस पर। और बहनों, अब रुख करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में आराधना फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की रचना को संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

बहनों, रिश्ते कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए साथ, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं।

0: बहनों, रिश्ते बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं। जरा सी गलती, गलतफहमी आपसी रिश्तों में खटास भर देती है। किसी भी रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है आपस में संवाद या कम्युनिकेशन की कमी। बहनों, मानवीय रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो या दोस्त, हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और जुड़ाव पर टिकी होती है। इस जुड़ाव को बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है संवाद। और बहनों, जब रिश्तों में संवाद की कमी होने लगती है तो वे खोखले होने लगते हैं। संवाद की कमी के प्रमुख कारणों में अहम और गलत फहमियाँ, समय का अभाव, सहानुभूति की कमी और सबसे प्रमुख कारण है सोशल मीडिया में व्यस्त होने के कारण। डिजिटल रूप से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर हो गए हैं। बहनों, संवाद की कमी से रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी अनकही बातें मिलकर एक बड़ा फासला बना लेती हैं, जिससे रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। संवाद के बिना आत्मीयता खत्म हो जाती है, और जब हम अपने मन की बात स्पष्ट रूप से नहीं कहते तो सामने वाला अपनी कल्पना के आधार पर अर्थ निकाल लेता है। बहनों, संवादहीनता को दूर करने का सबसे सरल उपाय यही है कि जब भी कोई आपसे बात करे, उसे ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। शिकायतों के बजाय अपनी भावनाएं व्यक्त करें, दूसरों के दृष्टिकोण का भी सम्मान करें। परिवार में कुछ समय ऐसा सुनिश्चित करें जब परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर खुलकर बात कर सकें। उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर में व्यस्त ना हो, सिर्फ परिवार के हर सदस्य का साथ हो, क्योंकि रिश्तों को बनाए रखने व बचाए रखने के लिए संवाद जरूरी है। तो बहनों, ये तो हमने आपसे चर्चा की रिश्तों में संवाद जरूरी। इस विषय पर कहा जाता है, ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। बहनों, रिश्तों में सर्वश्रेष्ठ और ईश्वर तुल्य माता पिता का रिश्ता होता है। वो ना सिर्फ जन्म देते हैं, बल्कि संस्कारों से सींच कर इस समाज और दुनिया में रहने लायक अच्छा इंसान बनाते हैं। बच्चों में संस्कार रोपित करने में माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज की वार्ता का विषय भी यही है, संस्कार निर्माण में माँ की भूमिका। और वार्ताकार है सुप्रिया अवस्थी।
1: शास्त्रों में कहा गया है, माता प्रथमो गुरु, अर्थात माता ही एक बालक की पहली गुरु होती है। शिशु जब इस दुनिया में आता है तो वह एक कोरे कागज या गीली मिट्टी के समान होता है। उस पर पहली उंगली, पहला शब्द और पहला स्पर्श माँ का ही होता है। गर्भकाल से शुरुआत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चे के संस्कारों की नींव माँ के गर्भ से ही पड़ने लगती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला माँ के गर्भ में ही सीखी थी। माँ जैसा सोचती है, जो देखती है, उसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। पहला परिचय माँ ही बच्चे को सही गलत, अपने पराये का और भाषा का बोध कराती है। माँ के आचरण का प्रभाव कथनी से बढ़कर करनी, बच्चे वह नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वह सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। माँ का आचरण ही बच्चे का सबसे बड़ा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान बन जाता है। जब एक बच्चा अपनी माँ को घर के बड़ों का सम्मान करते, भूखों को भोजन कराते या पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाते देखता है, तो दया और सेवा के संस्कार उसके भीतर खुद ब खुद पनपने लगते हैं। इसके लिए किसी विशेष ट्यूशन की आवश्यकता भी नहीं।

होती। सत्य और ईमानदारी। यदि माँ घर में छोटी मोटी बातों पर झूठ का सहारा लेती है, जैसे दरवाजे पर कोई आया और कहलवा देना कि माँ घर पर नहीं है, तो बच्चा सीख जाता है कि झूठ बोलना सामान्य बात है। इसके विपरीत माँ की सत्यनिष्ठा बच्चे को एक ईमानदार नागरिक बनाती है। जीवन में उतार चढ़ाव हर परिवार में आते हैं। संकट के समय माँ जिस धैर्य और साहस से परिस्थितियों का सामना करती है, उसे देखकर बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बनता है और सीखता है कि विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं है बल्कि रास्ता खुद निकालना है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि हर महान विभूति के पीछे उनकी माँ के संस्कारों की एक अटूट शक्ति थी। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाकर शौर्य और राष्ट्र रक्षा के संस्कार दिए। माता पुतलीबाई ने महात्मा गांधी को सत्य, अहिंसा और उपवास के संस्कार दिए, जिन्होंने मोहनदास को महात्मा बनाया। वहीं माता भुवनेश्वरी देवी ने स्वामी विवेकानंद को सिखाया कि पवित्र रहो, अपनी गरिमा को बनाए रखो और दूसरों के सम्मान को ठेस मत पहुँचाओ। मित्रों, एक विचारणीय बिंदु है कि शिवाजी महाराज को शिवाजी बनाने वाली जीजाबाई ही थी। यदि जीजाबाई ने उन्हें केवल सुख सुविधाओं की कहानियाँ सुनाई होती तो शायद इतिहास में हमें वह महानायक ना मिलता। आज का युग डिजिटल युग है। आज की माताओं के सामने चुनौतियाँ पहले से कहीं अधिक और जटिल हैं। आज बच्चे माँ की कहानियों से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन के करीब हैं। यहाँ माँ की भूमिका और बढ़ जाती है कि वह बच्चे को तकनीक के जाल से निकाल कर मानवीय संवेदनाओं से जोड़े। अति लाड़ प्यार, या यूं कहें ओवर प्रोटेक्शन। कई बार अत्यधिक प्रेम के कारण माताएं बच्चों की हर सही गलत जिद पूरी कर देती हैं। इससे बच्चों में अहंकार और धैर्य की कमी जैसे कुसंस्कार आ जाते हैं। माँ को प्रेम के साथ साथ अनुशासन का संतुलन भी बनाना होगा। नैतिक मूल्यों की शिक्षा। आज शिक्षा का मतलब केवल अच्छे नंबर लाना या बड़ा पैकेज पाना रह गया है, लेकिन एक माँ ही बच्चे को सिखा सकती है कि सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण एक अच्छा इंसान बनना है। एक माँ को माँ के साथ साथ अपने बच्चों का अच्छा मित्र भी होना चाहिए, जिससे बच्चा अपनी माँ को अपने साथ हो रहे अच्छे और बुरे बर्ताव या उसके साथ हो रही बातों को साझा करे, जिससे माँ को पता चल सके कि उसका बच्चा किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है। अंत में माँ बाप से बस यही कहना चाहूँगी कि संस्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके या किसी स्कूल की किताबों से रटी जा सके। यह तो वह खुशबू है जो माँ के आंचल से रिस कर बच्चों के व्यक्तित्व में महकती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, तुम मुझे अच्छी माताएं दो तो तुम्हें एक महान राष्ट्र दूंगा। बच्चे की प्रथम शाला उसका घर होता है और घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। माता पिता को बच्चों के सामने कभी लड़ना और बहसबाजी भी नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। घर पर बुजुर्ग हों तो उनका ख्याल रखना चाहिए और आदर भाव उनके प्रति रखना चाहिए। बच्चा बचपन से यह देखता है, लाड़ प्यार करो, किंतु हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। धूप छांव भी मालूम होना चाहिए। केवल सुख ही सुख देने से कठिन परिस्थिति में वह कमजोर पड़ जाता है और सामना नहीं कर पाता है। बचपन से बच्चों में संघर्ष और मेहनत से ही सफलता की सीढ़ी प्राप्त होती है, इस बात का बीज बो देना चाहिए। बच्चों में संगत का असर तुरंत होता है। अतः माँ को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किन बच्चों के साथ खेलता है और रहता है। किसी भी कार्य को करने में यदि बच्चा डरता है तो उसे हिम्मत और विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम यह कर सकते हो। यह विश्वास और साहस माँ ही दे सकती है। टीनेजर बच्चों को संभालना कठिन है और इसी उम्र में माता पिता की परीक्षा होती है। थोड़ा ध्यान दें तो यह समस्या भी हल हो सकती है। फिर भी यदि बच्चे आज के माहौल को देखते हुए बिगड़ जाते हैं तो माँ को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा असंस्कारी कहलाए। निसंदेह बच्चों में संस्कारों का बीज माँ द्वारा ही बोया जाता है। वही बीज आगे चलकर एक मीठे फलदार वृक्ष के रूप में बदल जाता है, जो समाज को ठंडी छांव प्रदान करने में सहायता करता है। आरंभ के कई वर्षों तक बच्चा माँ एवं घर के अन्य बड़ों के साथ ही वक्त गुजारता है, जिनके छत्र छाया में रहकर वह रहन सहन बात व्यवहार सीखता है। इन संस्कारों के साथ ही वह बड़ा होता है और जीवन में इन्हीं बातों का अनुकरण करता है। क्योंकि नारी का कार्य घर की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण और विकास है, अतः एक नारी का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित माँ अपनी संतान को उन्नत बना सकती है। जीवन के सभी तौर तरीकों को जानकर बच्चों को शिक्षित और संस्कारित कर सकती है।
बच्चे सबसे अधिक माँ के संपर्क में रहते हैं।

0: हैं और इसीलिए माँ उनकी प्रथम गुरु होती है। आजकल के माहौल में यह अनोखा आनंद, भोलापन, मासूमियत आज के बचपन में नहीं दिखाई देती है। सामाजिक बदलाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर, वीडियो गेम, दूरदर्शन, मोबाइल आदि के कारण बच्चों के घर के अंदर अपना मनोरंजन करते हैं, जिनसे उनका शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। वे अकेलापन, कुंठा, तनाव और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आज के बच्चों के बचपन में बचपन नज़र आ रहा है। उन्हें मस्ती, शरारत, रूठना, मनाना, नादानियाँ, भोलापन, ये सब कहीं दिख ही नहीं रहा है। उनका बचपन इंटरनेट इंद्रजाल में फंसकर नेट पिटारे में अपनी दुनिया की अच्छाई और बुराई देख रहा है। एक माँ जब तक बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, तो वह केवल एक व्यक्ति का सुधार नहीं करती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करती है। एक संस्कारी बच्चा कभी भी किसी का हक नहीं मारता, कभी महिलाओं का अनादर नहीं करता और कभी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता। आइए आज हम सब अपनी माताओं के इस अमूल्य योगदान को नमन करें और समाज की हर माँ को वह सम्मान और सहयोग दें जिसकी वह हकदार है, ताकि वे एक सुंदर और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर सकें।
1: अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआएं साथ होती हैं। बहनों, अभी आपने वार्ता सुनी संस्कार निर्माण में माँ की भूमिका, और वार्ताकार थी सुप्रिया अवस्थी। तुम एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताब ले आऊँगा। तोड़ कर लाने के वादे नहीं, मैं अपनी कलम से सितारे सजाऊंगा। तो बहनों, चलिए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिया है हमने महबूब की मेहंदी से। युगल स्वर है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का। गीतकार आनंद बख्शी की रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और चलिए अब देते हैं आपको उपयोगी जानकारी। बहनों, स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरी है अच्छी दिनचर्या का होना। एक आदर्श दिनचर्या वह है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखे। बहनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को सोने तक एक निश्चित चक्र आपको हमेशा ऊर्जावान और निरोगी बनाए रख सकता है। बहनों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 5 से 6 के मध्य उठने की आदत डालें। उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए जो पाचन तंत्र को साफ करता है। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर 30 से 40 मिनट योग, व्यायाम या प्रातःकाल की सैर करें। बहनों, पौष्टिक और प्रोटीन युक्त नाश्ते में दलिया, अंकुरित अनाज, मौसमी फलों का सेवन करें। दोपहर में संतुलित भोजन जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद का सेवन करें और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं और लगातार बैठने से बचें। बहनों, शाम को हल्का नाश्ता जैसे फल, मखाने, स्नैक्स का सेवन करें। अत्यधिक चाय, कॉफी के सेवन से बचें और रात का भोजन हल्का करें और सोने के 2 से 3 घंटे पहले ही भोजन कर लें। यदि आप सोते समय दूध लेते हैं तो वह भी सोने के 1 घंटे पहले ही ले लें। बहनों, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, इससे आप अगले दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। और बहनों, अच्छी दिनचर्या स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छी दिनचर्या अपनाएं और स्वस्थ रहें। तो ये तो अभी हमने आपको उपयोगी जानकारी दी, हमारी दिनचर्या कैसी हो इस विषय पर। बहनों, इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। तेज धूप के साथ आंधी, तूफान, लू, लपट हर एक की परेशानी का सबब बना हुआ है। स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से सावधानी रखना जरूरी है। बहनों, जब तक जरूरी काम ना हो, दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें और हो सके तो सूरज ढलने पर ही बाहर जाएं। बहनों, घर से बाहर निकलने पर पूरे ढके हुए सूती कपड़े पहने, सिर और कानों को अंगोछा, तौलिया, दुपट्टा से अच्छी तरह ढकें। पानी की बोतल, भुंजे चने और गुड़ हमेशा अपने साथ रखें और समय समय पर सेवन करते रहें। बहनों, बाहर से घर वापस आने पर सीधे कूलर और एसी की ठंडक में ना बैठें और ना ही तुरंत हाथ पैर धोएं और ना ही नहाएं। पसीना सूखने और शरीर का तापमान सामान्य आने पर ही आप नहाएं। बहनों, गर्मी व लू से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अन्य तरल पदार्थों में छाछ या मट्ठा, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, लस्सी, सतुआ, बेल का शरबत, ठंडाई जैसे शीतलता प्रदान करने वाले पारंपरिक पेय पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट व तरोताजा रखने वाले फल, सब्जी जैसे तरबूज, खरबूज, लीची, खिन्नी, लौकी, तोरई, खीरा, प्याज, टमाटर का सेवन करते रहें। बहनों, इस मौसम में ज़्यादा मिर्च मसाला, तेलीय व बाहर की चाट पकौड़ी व बासी खाना खाने से बचें। घर का बना हुआ ताज़ा सुपाच्य हल्का भोजन करें। और बहनों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी गर्मी, लू, लपट से बचा सकते हैं। और बहनों, टिक टिक करती घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इतना ही कहूंगी कि जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो, वैसे वैसे आप शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोट नहीं। बहनों, आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, धीरेंद्र नागर की आवाज़ में नशा मुक्ति गीत।

नशा मुक्ति लोकगीत आप सुन रहे थे धीरेंद्र नागर से। लीजिए अब लोक संगीत में आपको सुनवा रहे हैं नीलम तिवारी का गाया ये वाला लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बड़े भैया रायकवार और साथियों का गाया ये लोक गीत।
1: अरे आवे क्या सो।

लोक संगीत में आपने सुना धीरेंद्र नागर, नीलम तिवारी और बड़े भैया रायकवार और साथियों के गाए लोकगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दामोदर विनीत के गाए भजन। ये गीत और भजन आप सुनेंगे और ये आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

अगला प्रसारण अंतराल के बाद। सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। हम किसी से कम नहीं, मोहम्मद रफी के साथ सुषमा श्रेष्ठा है, गीत लिखा है मजरूर ने, संगीत है RD बर्मन का।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अंतिम गीत नीलकमल का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रवि का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय समय से ही पहले हासिल कर लिया गया है।
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन 2047 के तहत लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति आज ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचेंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि

0: अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। इसके बाद वे रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं, जिनमें पटना के हॉर्डिंग पार्क में 5 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और फतुहा रेलवे स्टेशन का विकास शामिल है। रेल मंत्री ने छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को आज रवाना करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि 3 मई की परीक्षा के एडमिट कार्ड पुनर्परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि कई उम्मीदवारों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उज्जैन में मेडिसिटी, साइंस सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर यादव ने कहा कि गुजरात की तरह राजधानी भोपाल में गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी, जिससे इकाई सिटी यानी एजुकेशन, नॉलेज एंड AI सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी। प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्प कला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के सुप्रतिष्ठित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं मौसम की। सामान्यतः 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुँचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है, जिससे खरीफ की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम के गोविंद नगर बनखड़ी कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी रोक को हटा दिया है। शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों के विकास लाइसेंस और अनुमतियों की कड़ाई से निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय सेल का गठन किया गया है और गुना कलेक्ट्रेट में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन विभाग के द्वारा मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थाई प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त

0: रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे

0: और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक

0: एक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही ना हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है दो बदन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है रवि का। इसकी पसंद इस गीत के बाद हम आपको बताते हैं।

आपने सुना दो बदन में लता मंगेशकर को। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म से। शब्बीर कुमार की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का। दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश इस तरह से है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की ओर से आशा विनायका, हीरामणि जैन, माधवी शाह, संगीता जैन तारण, अनीता जैन, संगीता चौधरी, वंदना जैन, रेखा जैन, दीप्ति, दिशा जैन, चित्रा, कल्पना जैन, माला जैन, ममता जैन, निधि जैन, कुमुद जैन, रानू जैन, ऋतु जैन, संजना जैन, सरिता जैन, विभा जैन, ती जैन, इसी गीत को सुनना चाहा है चंद्रा बड़जात्या, मंजू मगन और बबीता जैन ने। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है भोपाल से वर्षा जैन, प्रीति जैन, संध्या मोदी, अंजू जैन, अन्नपूर्णा जैन, नीलम जैन, मीनू जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, सपना जैन और श्रद्धा जैन ने। मोनिका जैन ने भी इस गीत को पसंद किया है। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर बेताब फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं धर्म करम फिल्म से, मुकेश और साथियों की आवाज है, गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहा है साइकिल वाला परिवार इंदौर से, चंदा सिंघई, अरविंद उषा सिंघई, महेंद्र जिनेन्द्र भारती सिंघई, राजेश सुनीता, रजनीश रचना, रत्नेश प्रीति, निशांत रेशु, आशीष बिंजल, मोहित रिद्धि, जानू और सुरभि जैन ने। इसी गीत को सुनना चाहा है मुंबई से कमलेश नमिता जैन, निक्की रीनी जैन, विदिशा से निदेश नम्रता जैन, गुना से नीलेश अंकिता जैन ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है आपके दोस्तों और परिवार वालों ने। तो लीजिए सभी मिलकर सुनिए धर्म कर्म फिल्म का ये गीत।

और लीजिए आपकी फरमाइश का अगला गीत हमने लिया है महबूब की मेहंदी इस फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है बीना जिला सागर से विमल कुमार कठरिया, सलील सुनीता कठरिया, संजय रत्ना कठरिया, साकेत प्रिया कठरिया, रौनक श्रुति जैनिशा कठरिया ने। छिंदवाड़ा से अशोक शोभा वैद्य, अक्षत रीना वैद्य, रिद्धि शुभम वैद्य ने। भोपाल जुमेराती से संजय संध्या जैन, डॉक्टर जूही जैन, एडवोकेट मनु जैन, नेहा आभाष, ग्रंथ दिव्य जैन, सुनील साहिल, अंकिता शार्विल, सौम्या और कशिश ने। तो आप सभी की पसंद पर महबूब की मेहंदी का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: आप आनंद ले रहे हैं आपकी फरमाइश का, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत हमने लिया है पारसमणि फिल्म से, लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है असद भोपाली ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने के लिए हमें चिट्ठियां भेजी हैं खुरई जिला सागर से डॉक्टर नरेंद्र किरण जैन, अजित इंदिरा जैन, पुष्पा जैन, अमित जैन, श्रद्धा जैन, राकेश मंजू जैन, राजेश माधवी जैन, गोल्डी रूपम, मनीष नीलम, मनोज वंदना, निधि नितिन जैन, सोनाली विवेक जैन, सुनील सुधीर जैन, अंजू जैन, संजय जैन और पल्लवी राहुल जैन, पुष्पक जैन ने। आप सभी परिवार वालों के लिए भेज रहे हैं पारसमणि फिल्म का ये गीत।
1: जब याद आए

और लीजिए आपको सुनवा रहे हैं वो कौन थी, इस फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का। इस गीत को पसंद करने के लिए चिट्ठियां भेजी हैं भोपाल गौतम नगर से पंडित ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, अक्षरा अनुष्का शर्मा। इसी गीत को भोपाल कोलार से नरेश, ममता जैन, हेमा करुणा, गीत अमन, आशिमा जैन ने पसंद किया है। आप सभी की पसंद पर ये गीत आपके लिए भेज रहे हैं, कृपया आनंद।

और लीजिए, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म में अमित कुमार को, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का। इस गीत को पसंद किया इंदौर से सुशीला देवी, चंदा देवी और भोपाल से समीर, कृतिका, सम्यक, शुभ्रा ने। इसी गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है, आज्ञा दीजिए साधना जैन को मेरी आवाज़ के माध्यम से दुआओं में याद रखिएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख करोड़ के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर भी जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उनके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उज्जैन में मेडिसिटी, साइंस सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर चर्चा की गई और प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर कला और संस्कृति का अनूठा उत्सव मनाया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं। एक नज़र डालते हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शाम 5:10 पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम की सभा में 5:33 पर, 6:30, 8:35 पर और 9:45 पर। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 7:21 पर ग्राम सभा में सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। रात 9:30 खेल जगत में सुनिएगा आलोक कुमार चतुर्वेदी की वार्ता, फीफा वर्ल्ड कप में टीमों का प्रदर्शन। रात 10:00 आपकी फरमाइश और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा सारंग फगरे का राग बागेश्वरी में ख्याल गायन।

डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। इसमें आप सुनेंगे धीरेन्द्र नागर, नीलम तिवारी और बड़े भैया रायकवार और साथियों के गाए बुंदेली लोक। इसे फिर से सुन लीजिए कि लोक संगीत में आप सुनेंगे धीरेन्द्र नागर, नीलम तिवारी, बड़े भैया रायकवार और साथियों के गाए लोकगीत।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। डीटीएच पर जारी रहेगा।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं दामोदर विनीत के गाए गीत और भजन। ये आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत में दामोदर विनीत का गाए आप गीत और भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत एक दूजे के लिए लता मंगेशकर के साथ अनूप जलोटा की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

लीजिए, नूरी फिल्म में सुनवा रहे हैं आपको महेंद्र कपूर, जगजीत कौर और साथियों को। जानिसार अख्तर ने गीत को लिखा है और खयाम ने संगीत दिया है।

उसको आशिक ना कहो, दूर से प्यार करे उसको आशिक ना कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक ना कहो, जो जमाने से डरे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पूर्ण कर आगे के निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय विदाई दी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पूर्ण कर आगे के निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डिजिटल पहल की है। एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत अब छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि ये सभी आधिकारिक संदेश केवल उनके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है और प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर कला और संस्कृति का अनूठा उत्सव मनाया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ साथियों की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरू ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

मैंने प्यार किया मैं लता मंगेशकर के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम को सुन रहे थे। देव कोहली ने गीत को लिखा था और राम लक्ष्मण ने संगीत दिया था।

दिल तो पागल है, इस फिल्म में लता मंगेशकर उदित नारायण को सुनिएगा। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत है उत्तम सिंह का।

0: और लीजिए कार्यक्रम के अंत में दिल तो पागल है इस फिल्म में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण को। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत है उत्तम सिंह का।
1: गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। डीटीएच पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। दिन के 4:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवन मोहिनी का भाग एक।
1: विंध्य वसुंधरा की दैदीप्यमान लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय पंडित सिद्ध विनायक द्विवेदी का जन्म 9 जुलाई सन 1912 को रीवा जिले के एक गांव बिछिया भड़रा में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगा प्रसाद द्विवेदी और माता का नाम मनका देवी था। उनकी शिक्षा भी रीवा में ही हुई थी। उन्होंने सन 1929 में अंग्रेजी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिद्ध विनायक द्विवेदी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने रीवा और आगरा की जेलों में लगभग 8 साल बिताए। श्री द्विवेदी ने अपने साहित्य के माध्यम से सामंतशाही और राजतंत्र का जोरदार विरोध किया था। जनमानस में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना और सामाजिक व आर्थिक समता की भावना को जगाने का उनका प्रयास अद्वितीय था। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी बुद्धिजीवियों के लिए एक मिसाल बनी। आजीवन सांसारिक वितृष्णा का विषपान करने वाले पंडित सिद्ध विनायक द्विवेदी ने 17 सितंबर 1959 को अखाड़ घाट रीवा स्थित एक मंदिर में अपनी अंतिम सांसें लीं।

0: राजकुमार, राजकुमार विजय श्रीवा।
1: कौन? अरण्यक?
0: और कौन आ सकता है आपकी संग्रहशाला में मेरे अतिरिक्त?
1: आओ मित्र, अभी तुम जग रहे थे?
0: क्या करता, रंगशाला की खिड़की से तीव्र प्रकाश जो आ रहा था,
1: अपनी खिड़की बंद कर लेते।
0: नींद

0: फिर भी ना आती।
1: क्यों?
0: अब रात्रि के तीसरे प्रहर तक अपने युवराज मित्र जागरण कर रहे हूं तो नींद किस दृष्ट सेवक को आ सकती है। अरे वाह, क्या चित्र बनाया आपने! धन्य हो मित्र, धन्य हो। यानी कि 3 मास की अनवरत तपस्या के बाद भुवन मोहिनी का चित्र पूर्ण कर ही लिया आपने।
1: हाँ अरण्यक, परंतु मुझे लगता है कि साक्षात भुवन मोहिनी के सामने उसका यह चित्र कुछ भी नहीं। मैं क्या, कोई भी चित्रकार उसका चित्र नहीं बना सकता।
0: युवराज, इस संसार में आपसे बढ़कर कलाकार और कलापारखी कौन होगा? अब जब आप ही ऐसा कह रहे हैं तो सच ही मानता हूं, परंतु एक बात मेरी भी सच मानिए, आपकी प्यास भुवन मोहिनी के चित्र को देखकर नहीं बुझेगी।
1: तुमने ठीक कहा मित्र, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस दिन जब मेरे पिताश्री महाराज दुमत सेन भरी राज्यसभा में भुवन मोहिनी का नृत्य देख रहे थे तो वो संभवतः भाप गए थे कि भुवन मोहिनी सामंतों की सभा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए नृत्य कर रही थी।
0: और इसी अपराध के कारण उन्होंने राज नर्तकी भुवन मोहिनी को धारा नगरी से निष्कासित कर दिया।
1: हाँ, और तभी से हम उससे मिलने के लिए व्याकुल हैं। अरण्यक, ये वही दृश्य है जिसे मैं अपनी आंखों से विस्मृत नहीं कर पा रहा हूं। जब भुवन मोहिनी अंतिम बार मुझसे मिलने आई थी।
0: आपसे मिलने आई थी? कब? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया।
1: रात्रि के चौथे प्रहर में, यहीं इसी कक्ष में, मैं यही चित्र बनाने में तल्लीन था कि तभी कानों में ध्वनि आई।
2: राजकुमार,
1: भुवन मोहिनी, तुम और पुरुष वेश में?
2: क्या करती, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय नहीं था। स्वामी क्षमा करना, जाते जाते तुम्हें देखने की चाह को नहीं दबा सकी।
1: क्षमा तो मैं तुमसे चाहता हूं भुवन मोहिनी, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। परंतु भुवन मोहिनी, तुम ये भी मान लो कि तुम्हारे बिना आज से ये धारा नगरी का राजकुमार सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा।
2: नहीं नहीं जीवन धन, मुझ जैसी तुच्छ नर्तकी के लिए ऐसा कठिन व्रत लेना महान भूल होगी आपकी। राज ऐश्वर्य से युक्त भोग विलास ही आपके श्रृंगार है, सन्यास नहीं।
1: मुझे नहीं चाहिए भोग विलास और राज ऐश्वर्य, मैं तो अपने जीवन में भुवन मोहिनी को प्राप्त करने की मधुर आकांक्षा पाल चुका हूं। तुम सोचती हो कि तुम मेरे दृष्टिपथ से दूर बसोगी और मैं भोग विलास में डूबकर तुम्हें भूल सकूंगा? असंभव, असंभव है भुवन, असंभव। प्रिय, राज्याज्ञा का विरोध करने की शक्ति आज मुझ में नहीं है, किंतु मुझ में ऐसी राज्याज्ञा के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं है। समय इसका उत्तर देगा। आज मैं विवश हूं, मौन हूं, प्रेम पीड़ित हूं।
2: मेरे राजकुमार
1: भुवन, ये लो, मैं अपना मणिमाल तुम्हें और अपने प्रेम को अर्पित करता हूं।
2: ये क्या राजकुमार?
1: प्रियतमे, मेरे इस उपहार को कभी भी अपने वक्षस्थल से क्षण भर के लिए भी दूर न करना, अन्यथा मेरे प्रेम सिक्त हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंचेगी और मैं समझूंगा कि मेरे मणिमाल को अपने हृदय से दूर करके मेरी सबसे बड़ी उपेक्षा की है।
2: देव, आपके द्वारा प्रदान किए गए मणिमाल को मैंने स्वीकार किया, किंतु इस मणिमाल की शोभा मुझ जैसी क्षुद्र नर्तकी के हृदय प्रदेश को विभूषित करने में बढ़ेगी नहीं, अपितु घट जाएगी। यदि आप मेरी प्रार्थना माने तो मेरे इस मणिमाल को अपने ही वक्षस्थल में सुशोभित दिखने दें। क्या मेरी इस कामना को मेरे देवता पूर्ण नहीं करेंगे?
1: नहीं भुवन, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं।
2: मैंने लिया ना, हृदय में रख लिया।

0: परंतु मेरी ओर से अपने पास ही रखने की मेरी इस कामना को पूर्ण करिए मेरे प्रिय।
1: अच्छा ठीक है, यदि तुम्हें मेरे हृदय प्रदेश पर इसे अलंकृत देखने में सुख मिलता है तब मैं इसे तुम्हारा उपहार समझकर स्वीकार करूंगा। पर ये तुम मान लो कि इस हार पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं और ना ही स्वामित्व।
0: मुझे आपने आज बहुत सुख दिया मेरी राजकुमार। कैसे बीतेगा समय आपके बिना नहीं जानती। कैसे जी पाऊंगी मैं, बस आपको देखने की आस ही जलाई रखेगी मुझे।
1: भुवन
0: मेरे विजय श्रवा, अब मेरे चलने का समय हो गया है, क्या आप मुझे छोड़ने नहीं चलेंगे?
1: अवश्य चलूंगा भुवन, परंतु तुम जाओगी कहां?
0: जहां भाग्य ले जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्रेम मेरे साथ छाया की भांति सदैव रहेगा, मेरी सुरक्षा में।
1: भुवन
0: विजय श्रवा, अब चलिए, अन्यथा सम्राट को संदेह हो जाएगा।
1: हाँ हाँ चलो।
2: प्रणाम युवराज।
3: सारथी, भुवन मोहिनी को कोई कष्ट ना हो, ध्यान रखना।
2: आज्ञा युवराज।
1: जाओ प्रेत में, प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारा यही राजकुमार इसी रथ से तुम्हें अवश्य बुलवाएगा।
0: उसी पल की प्रतीक्षा में मेरा समय व्यतीत होगा युवराज।
1: बस वही दृश्य मेरी आंखों में बस गया अरण्यक, भुवन मोहिनी की वो कातर आंखें, वो प्यास, वो तड़प।
4: अब आपको सो जाना चाहिए मित्र, क्योंकि अब मुझे भी नींद आने लगी है।
1: अवश्य अरण्यक। अरण्यक।
4: हाँ मित्र।
1: इस चित्र को कल सुबह तुम रंगशाला से उठाकर मेरे एकांत शयनागार में सजा दोगे?
4: क्यों नहीं, इस चित्र के लिए उचित स्थान तो वही है।
1: किंतु ध्यान रहे, चित्र रास्ते में अनावृत ना हो। मैं पिछले 3 महीनों से भुवन मोहिनी का चित्र बना रहा हूं, ये रहस्य तुम्हारे सिवा किसी को ज्ञात नहीं है।
4: और ना ही ज्ञात होगा, आप आश्वस्त रहें, अब तो आज्ञा है मित्र।
1: हाँ जाओ।
4: आभारी हुआ।
5: राजकुमार।
1: हाँ माँ।
5: क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल पर बसंत की बेला में ये पतझड़ जैसा क्यों है?
1: कुछ नहीं माँ, बस यूं ही।
5: मुझे बताओ पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं देख रही हूं आजकल तुम प्रसन्न नहीं रहते।
1: माँ मेरी प्रसन्नता खो चुकी है, मैं किसी अभाव में पल पल खुल रहा हूं, किंतु समझ नहीं पा रहा हूं कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए।
5: मैं जानती हूं, राजकुमार विजय श्रवा को चाहिए भुवन मोहिनी, एक वैश्या, एक नर्तकी। क्यों, ठीक है ना
1: मां?
5: तुम मेरे एकमात्र लाडले हो, धारा नगरी के भावी शासक हो और इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। छी, तुम्हारे पद और प्रतिष्ठा के लिए ये कैसी अशोभनीय स्थिति है कि तुम एक सिंघनी की कोख से जन्म लेकर उच्छिष्टा श्रृंगाली के प्रेम में मतवाले हो रहे हो। देश देश की राजबालाएं राजकुमार विजय श्रवा की राजमहिषी बनने की मधुर आकांक्षाएं पालकर जब तप कर रही हैं। पूरे साम्राज्य से अपनी अपनी राजकुमारियों के लिए अनेक देशों के सम्राट और खंड राज्यों के नरेश वर याचना कर रहे हैं, किंतु स्वयं राजकुमार मोतियों का हार ठुकराकर सीप की माला पहनने को व्यग्र है।
1: मां,
5: मैं समझती थी कि राजकुमार अपनी एकांत रंगशाला में बैठकर वीणा पाणी सरस्वती की आराधना करते हैं,

किंतु जब मैंने भुवन मोहिनी का चित्र देखा तो अवाक रह गई। सम्राट ने जब आदेश निकाला कि भुवन मोहिनी को धारा नगरी से निर्वासित किया जाता है तो मुझे आश्चर्य हुआ था। कारण जानने की प्रार्थना जब मैंने की तब सम्राट ने स्वयं बताया कि तुम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो। किंतु उस समय मैं सम्राट की बातों में विश्वास नहीं कर सकी थी। उल्टे मैंने सम्राट से निवेदन किया कि अकलुष राजकुमार पर ऐसे लांछन लगाना मेरे दूध और कोक का अपमान है। परंतु इसके पश्चात मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें एकाग्रतापूर्वक भुवन मोहिनी का चित्र बनाते हुए देखा। राजकुमार, क्या तुम बता सकते हो कि विगत 3 मासों से तुम मेरे समीप क्यों नहीं आए? विगत 3 मासों में क्यों तुम आखेट में वन जाना भूल गए? क्यों राज्यसभा में उपस्थित लोगों ने तुम्हारी अगणित बार प्रतीक्षा की? क्या महोत्सवों के प्रति तुम्हारे हृदय का संपूर्ण आकर्षण अब नहीं रहा? क्यों तुम्हारे असमय वैराग्य के प्रति धारा नगरी की प्रजा में हीनतम आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हुआ करती हैं? क्या तुमने अपने मौन का कोई उपयुक्त कारण खोज निकाला है अब तक? मेरे दूध की लाश तुम्हारे हाथ है, मैं जाती हूं, तुम्हारा अधिक समय व्यर्थ नहीं करूंगी। किंतु जाते जाते तुमसे यह मांग करके जाती हूं कि एक पतित पुत्र की माता कहलाने के दोष से मुझे मुक्त रखना।

0: मित्र कितनी देर हो गई थी आपको गए हुए? कहां रह गए थे?
1: बहुत हो गया अरण्यक, शीघ्र ही मेरी दीर्घ यात्रा का प्रबंध करो। ठीक अर्धरात्रि के समय मैं धारा नगरी छोड़ दूंगा। अभी जाकर रथ सजाओ और सेवकों को चलने का आदेश दो।
0: जो आज्ञा मित्र, परंतु पहले भोजन तो ग्रहण कर लीजिए।
1: नहीं आरण्यक, धारा नगरी में अब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब सारा प्रबंध हो जाए मुझे बता देना। हां, ध्यान रहे यात्रा का भेद किसी को ज्ञात ना हो। साथ में चलने वाले सेवकों को भी आदेश दे दो कि वो इसकी चर्चा किसी से ना करें।
0: जी बहुत अच्छा।
1: और हां, भुवन मोहिनी को मेरे साथ बिठाना।
0: क्या?
1: उनके चित्र को?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बिठाऊंगा। उन्हें नहीं बिठाऊंगा तो क्या मैं बैठूंगा? मित्र, सारथी के लिए कोई आज्ञा है क्या कि घोड़ों को किस दिशा में दौड़ाए?
1: कोई निश्चित मार्ग नहीं है अरण्यक, जिधर उसके घोड़े जाएं जाने दो।
0: चलते रहो सारथी, नियति का क्रूर विधान जिधर ले चले चलते रहो। ठीक है अरण्यक।
1: अरण्यक, राजमाता ने आज मुझे बहुत जलीकटी सुनाई।
0: मैं समझ गया था मित्र, अवश्य आपका हृदय उन्हीं की बातों से विगलित हुआ होगा।
1: और अब मैं इसका प्रतिकार लूंगा।
0: अपनी मां से?
1: हां, आजीवन अविवाहित रहकर।
0: मित्र,
1: और इतना ही नहीं, निर्वासित की भांति वनवासी जीवन भी व्यतीत करूंगा।
0: आश्चर्य है मित्र।
1: किस बात का?
0: जब भुवन मोहिनी को निर्वासन का आदेश मिला था तो उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसके प्रश्न पर राजकुमार को भी निर्वासित होना पड़ेगा।
1: हैं? ऐसा कहा था उसने?
0: हां मित्र, ये बात मैंने उसकी एक दासी से जानी थी।
1: कैसे कैसे वो विश्वासपूर्वक कह सकी कि एक दिन मुझे भी निर्वासित होना पड़ेगा?
0: ये तो मैं नहीं बता सकता मित्र, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी ने एक तुच्छ नर्तकी के घर जन्म तो लिया था, परंतु वो न जाने कितने मानवीय गुणों से भरपूर यौवना थी। संगीत और नृत्य में प्रवीणा तो थी ही, सुना है कि वो वेदांत, दर्शन, न्याय, मीमांसा और राजनीति जैसे शुष्क और गहन विषयों में भी पारंगत थी।
1: हां ये सत्य है अरण्यक कि भुवन मोहिनी की माता उसे शिक्षिता बनाने के लिए विद्वानों का विशेष आदर करती थी और प्रायः उनकी आर्थिक सहायता भी बहुत करती थी।
0: तब तो ऐसा ही होना था मित्र।
1: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी का पता लगा?

0: सकते हो।
1: इसमें क्या पता लगाना, मुझे पहले से ही ज्ञात है।
0: पहले से ही ज्ञात है?
1: हाँ।
0: कहाँ है वो?
1: इंद्रप्रस्थ में।
0: इंद्रप्रस्थ में?
1: हाँ, मुझे पता चला था कि निकाले जाने के बाद भुवन मोहिनी राजस्थान की ओर गई थी। वहां जैन आचार्यों ने उसे इंद्रिय निग्रह और त्याग की शिक्षा दी, किंतु ये भी सुनने में आया कि व्रत, उपवास, शमन, दमन आदि करने वाले आचार्य भी स्वयं उसकी रूप शिखा पर पतंगे की भांति भस्म होने लगे। तब से तो उसे ज्ञान उपदेश देने वाले साधुओं से घृणा हो गई थी। मित्र, भुवन मोहिनी यह अवश्य चाहती थी कि उसे कोई नर्तकी न समझे, सम्मानित गृहस्थ नारी की भांति जीवन बिताना चाहती थी, परंतु दुर्भाग्य क्या ऐसा न कर सके। इसीलिए अब उसने एक आश्रम बना लिया है जहां वो राग रागनियों को सिद्ध करने में तल्लीन है।
0: आश्रम? तो क्यों ना हम उसकी खोज में इंद्रप्रस्थ की ओर ही चलें?
1: क्यों नहीं,
0: परंतु ध्यान रहे मुझे कोई भी धारा नगरी का राजकुमार ना समझे।
1: ये तो बहुत कठिन काम है मित्र।
0: कुछ भी कठिन नहीं है, मैं अपना नाम बदल लूंगा और मैं चाहता हूं कि वहां मुझे सभी लोग श्रेष्ठी कहकर संबोधित करें। ठीक रहेगा ना मित्र?
1: अब आपने निर्णय ही ले लिया है तो सब ठीक है। चलो भाई सारथी, इंद्रप्रस्थ की ओर चलो।
2: ठीक है रणक।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पूर्ण कर आगे के निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु प्रोफेसर एसके जैन द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में देशगान।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total

0: budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफ़र देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: पीपल विल फील सिक्योर. ओके, द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग. बट let the, this our prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, साथ है भारत सरकार.
1: जी. और चंद मुख्य बातों पर नज़र डालें तो यहाँ ज़रूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili.
1: Pehli baar.
0: Yeah. This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage

0: to a maximum of rupees 15,000.
1: Mm.
0: Right?
1: Mm.
0: And then the disbursement will be in two stages. Mm. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है.
0: Yes.
1: बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं.
0: Yeah.
1: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. है ना? See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं. नहीं, आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 years.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना

0: रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना? लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू, तो जरूर बताना चाहेंगे। योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था, है
1: ना? एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they get taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क, 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत, और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच, और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा। ये बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है।
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020। 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी।
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, when the money will go to

0: 15 lakh people into their accounts, and they'll be getting the letters, and it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: Yes, so it's full. Not a single seat is empty. People are, they're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they have got their letter.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: And see the support for employees, you know, this is the eligibility is establishments registered with the EPFO that successfully generate net new employment. To qualify, smaller firms fewer than 50 baseline workers must hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the
1: short film.
0: Yeah,

0: film, film, huh?
1: Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button, the magic button. Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
1: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
1: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीस डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something, you've got a future. Every person has a plan. A talent, God has given a talent in you, and He will see.

0: stopped. They are all in attention. And I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais. And once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He has entered. And he's entered. And he's walking in the most smartest way, our Prime Minister.
1: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
2: Ek baar
1: zordaar taaliyan ho jaye. Devyo aur sajjano, taaliyon ki gadgadahat rukni nahi chahiye.
2: Aur unke saath is afsar ki shobha aur bada rahe hai. Zordaar taaliyon se swagat kijiye. हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
1: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
2: मैं मन्नत भाटिया
1: और मैं जयवर्धन गोयल,
2: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत।
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais. Flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
1: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
2: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit Adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा।

पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था?

0: 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन

0: राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
1: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letter.

0: Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है।

ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को

अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं,

उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था

वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है।

और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है।

0: कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीणा और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बैड न्यूज़ फिल्म से हमने लिया है। करण औजला ने इसे गाया और गीत संगीत भी करण औजला का है।

अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने। कौशल मुनीर की शब्द रचना, संगीत तैयार किया तनिष्क बागची ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में डंकी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं जावेद अली का गाया, इरशाद कामिल का लिखा, रवि बसरूर का संगीतबद्ध किया, भोला फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत बवाल फिल्म से हमने लिया है, जिसे संगीतबद्ध किया मिथुन ने। इस गीत को लिखा मनोज मुंतशिर ने, आवाज अरिजीत सिंह की।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए बवाल फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

देश से। शाम के 7:05 हुए हैं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसे आप सुन सकते हैं आज रात 8:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:35 और 9:45 पर। 9:30 कार्यक्रम खेल जगत में सुनिएगा फीफा विश्व कप 2026 में टीमों के प्रदर्शन, इस विषय पर आलोक चतुर्वेदी की वार्ता। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा आज रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 सुनिएगा सारंग भगरे का ख्याल गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा 8:30। 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अनिल दंडोतिया के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 होगा कार्यक्रम अनमोल धरा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:50 पर। जिले की चिट्ठी इसका प्रसारण सुबह होगा 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर आप सुन सकते हैं 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 सुनिएगा राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन। ग्राम सभा कार्यक्रम होगा कल शाम 7:21 पर, इसमें सामयिक चर्चा साथ ही साथ फिर सुनिएगा लोक संगीत। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम के बाद आइए आपको जानकारी दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। 11:00 सुबह सुनिएगा फिल्म संगीत, आपकी फरमाइश दिन में 12:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में 12:30 सुनिएगा भुवन मोहिनी का भाग 2। 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं 2:00 और 2:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। शाम 3:55 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाप्ति तक, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। पॉडकास्ट सीरीज इसमें सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका भाग 6, समय रहेगा शाम 6:00। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान 7:45 पर। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष होगा रात 8:00। रात 9:30 चित्र भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके अलावा रात 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक

0: समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रायरंगपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस का कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में सड़क सीवर निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 6-लेन फ्लाईओवर की भी घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। करीब 70 लाख पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज भी मिला है।
5: भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे आदिवासी पवित्र उपवनों और कौशल केंद्र में सहभागिता करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे और 18,880 करोड़ रुपये की 23वीं PM किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है।
6: पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने, शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा NCC कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे विश्वास है वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों में अवश्य सफल होंगे।
4: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर के तुलसीनगर क्षेत्र में सड़क और सीवर निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान में इंदौर ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस दौरान कनाडिया रोड से खजराना रोड तक लिंक रोड और पूर्वी रिंग रोड से रोबोट चौराहे तक 6-लेन फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा भी की गई।
7: कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है। ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से रोबोट चौराहे पर एक 6-लेन फ्लाईओवर 10 करोड़ की लागत से बनाने की घोषणा करता हूँ।
4: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 78279802877 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
8: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश

0: न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक दिवसीय बिहार दौरे के दौरान आज विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। पटना में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से बिहार के IT क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई और उद्यमियों और स्टार्टअप से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस के जैन का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर लिया है। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलाधिपति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए कुलगुरु की नियुक्ति होने तक प्रबंध संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक शर्मा को कार्यवाहक कुलगुरु नामांकित किया है। धार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रहीं। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं से गरीबों और महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है। सीधी जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती हमारी पहचान रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए इसे फिर से अपनाना होगा। प्रदेश में संस्कृति विभाग के द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर कला और संस्कृति का अनूठा उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्पकला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री के आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन कल भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जाएगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रोफेसर और राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर PN सनेसर को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मानित किया। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खरगोन और गुना में सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुना के कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में आत्मा योजना के तहत प्राकृतिक कृषि आधारित कृषक संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पुनर्गठन की तैयारी के सिलसिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 सदस्यीय दल दिल्ली से शहडोल पहुंचा। भोपाल में एक पेड़ अपने बुजुर्गों के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के हज हाउस परिसर में वृक्षारोपण किया गया। जनजाति संग्रहालय में उत्तर प्रदेश की कोहबर चित्र परंपरा का अंकन शिविर 22 से 24 जून तक प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी में महिला हॉकी प्रशिक्षण के 10 दिवसीय आयोजन में शिवपुरी के साथ बिहार की महिला हॉकी टीम भी हिस्सा ले रही हैं। राजगढ़ जिले के माचलपुर सेक्टर द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अशोकनगर में आयोजित 12 दिवसीय पर्यटन मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। और मौसम में प्रदेश में 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल दौरे पर रायरंगपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में सड़क सीवर निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 6-लेन फ्लाई ओवर की भी घोषणा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा सुनने वाले हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैयाओं, आज हम ग्राम सभा लेके हाजिर हैं और विशेष रूप से आप सभी जन इंतजार करते हुए आपकी फरमाइशन को आपने चिट्ठियाँ भेजी है फरमाइशी कार्यक्रम के लाने, आपकी पाती, आपके फिल्मी गीत। बिल्कुल भैयाओं, आपके गीत हम लेके हाजिर हैं। मनोहर, इससे पहले हम चाहते हैं कि कछु अपन थोड़ी खेती किसानी की भी बातें कर लें। भैयाओं देखो, मानसून धीरे धीरे करीब आ तो जा रहा है, कई जगह जो है पानी खूब बरस रहा है, कई जगह जो है पहले भी बरसो है और कई जगह अभी नहीं बरसो है। मनोहर, अब धीरे धीरे जो है मानसून बिल्कुल करीब है, तो किसान भाई उन हिसाब से अपनी तैयारी करें, है ना। और फिर देखो, आजकल बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारे किसान भाई या तो वो जानते हैं या फिर इनने जो है इनको फ़ायदा नहीं उठाया है। ये जो ऐसे किसान भाई ये जो योजनाओं के बारे में नाव तो जानो है, मैंने उनके बारे में विस्तार से उन्हें पता नहीं है, तो चलो एक योजना हम आपको बता दें, वो है एकीकृत कृषि विपणन योजना। जय योजना ऐसी है भैया रहो कि ई योजना के तहत जो है कई तरह की जो है खाद बीज या फिर जो हमारे कबूल जो अपन बोलते हैं कृषि यंत्र, बिन पे जो है सब्सिडी दी जाते हैं ना। और एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत मंडियों में जो है आपकी जो है खरीदी बिक्री होते है, उनमें जो है कई तरह की सहूलियत मिले हैं। और फिर भाई देखो, सरकार की मंशा तो यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदों मिले, मुनाफा मिले। और इसके अलावा जो एक वैज्ञानिक ढंग से कृषि की कराई जाते है, खेती कराई जाते है, वो जो है एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और इनमें जो है ख़ास तौर से किसान भाइयों को वैज्ञानिक तकनीकें बताई जाते हैं और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुनाफा मिले, ऐसी तकनीकें बताई जाते हैं, ऐसी तकनीकें ईजाद करी जाते हैं। कृषि यंत्र को उपयोग तो सभी किसान भाई जाना थे, मनु कौन सा यंत्र जो है कितो महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी के संगे संगे यंत्रों पे सब्सिडी। अब कहा होते हैं कि कई छोटी जोत के किसान होते हैं, इनके पास उतना पैसा होता नहीं है, भी जो है बड़ी बड़ी मशीनें नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लाने एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत जो है यंत्रों की खरीदी की व्यवस्था करवाई जाते है, उन पर सब्सिडी दिलवाई जाते है। और फिर जो है पैदावार के दृष्टिकोण से भी जो है कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हमारी सरकार के द्वारा किसानों के लाने चलाई जाती है, उनमें भी जो है सब किसान भाई जो है योजना को लाभ ले। मनोकेत नहीं कि जानकारी को अभाव या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा पाते हैं जानकारी लेवे के लाने, तो इसके कारण जो है कई लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम आपको सीधो रास्ता बताते हैं, कहूँ नहीं जाए, अपने ग्राम पंचायत में जो अपने ग्राम सचिव रहे थे बिनसे आप जो है बातचीत कर लें, बिनसे सलाह मशवरा कर लें। योजना को नाव हमने बताई दो, ई योजना के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी आप चाहें तो अपने ब्लॉक में जाएं, ब्लॉक में नहीं तो जनपद में जाएं, जनपद में नहीं तो जिला में, हर जिला स्तर पे एक जो है कृषि विभाग को कार्यालय होते, जो जिला कार्यालय होते वहाँ जो है आप जाके जो है विस्तार से जानकारी ले सकें। और फिर देखो, कई किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जुड़े भय रहे थे, तो वे सीधे अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके जो है अधिकारियों से बातें कर ले। और जो ग्राम सहायक अधिकारी, ग्राम विस्तार अधिकारी, ये भी जो है विस्तार से जानकारी दे थे, तो इनसे भी आप जो है इसके बारे में चर्चा करें। और फिर देखो, चाहे एकीकृत कृषि विपणन योजना हो या फिर राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन हो, जब तक आप योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले तब तक आपको लाभ मिलना मुश्किल होते। और जहां आपको योजना की जानकारी हो गई, पात्रता की आपने शर्तें समझ ली, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी

0: बातें आपको ध्यान में रखने हैं, या फिर आप कहूँ फार्म भर रहे हैं योजना में शामिल होवे के लाने, तो कौन कौन से कागज आपको चाहिए, इनकी जो जानकारी आपने अगर रख ली तो सारी योजनाओं का लाभ जो है आप ले सकते हो। तो बिल्कुल भैया कोशिश करें, अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार जो अधिकारी है या कृषि ग्राम सहायक हैं उनसे भी आप बातचीत जरूर करें। और हम देख रहे हैं कि अब टीम हो रहा है बुंदेली समाचारन को।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं महेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पे रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संगे मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचे हैं। उतरे वे आदिवासी पवित्र उपवनों और कौशल केंद्र में सहभागिता कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर में करीब 1 बजे प्रधानमंत्री राय रंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होवे पे आयोजित कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास स्वीकारें। इतने प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे हैं, जहां वे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग ले हैं और 18,880 करोड़ रुपये की 23वीं पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के मौका पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लाओ। इस मौका पे राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति को स्वागत करो। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना करी और कही है कि स्क्रीनिंग को लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लो जी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर के तुलसी नगर क्षेत्र में सड़क और सीवर निर्माण कार्यों को भूमि पूजन करो और हितग्राहियों को हित लाभ बांटो। बिन्ने कही के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान में इंदौर ने देश भर में ऊंचो स्थान प्राप्त करो है। इस दौरान कनाडिया रोड पे खजराना रोड तक, लिंक रोड से पूर्वी रिंग रोड से रोबोट चौराहे तक 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण की भी घोषणा करी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होवे वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लाने एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करो है। एनटीए ने स्पष्ट करो है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल बिन के सत्यापित नंबर 7827980287 पे भेजे गए हैं और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जांच करवे की सलाह दी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित बरकत उत्तला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस के जैन को त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर लो है। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलाधिपतियों की शक्तियों को प्रयोग करत भय नए कुलगुरु की नियुक्ति होवे तक प्रबंध संकाय के संकाध्यक्ष प्रोफेसर विवेक शर्मा को कार्यवाहक कुलगुरु नामांकित करो है। प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पे कला और संस्कृति को अनूठो उत्सव मनाओ जा रहा है। इस मौका पे प्रदेश के 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्प कला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिनमें देश के कलाकार अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। धार में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होवे के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध जन संकल्प सम्मेलन आयोजित करो गयो है। सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। इतने सावित्री ठाकुर ने कही है कि सरकार की योजनाओं से गरीबों और महिलाओं को सशक्तिकरण मिलो है। सीधी जिले में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होवे के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती करवे बारे किसानन की कार्यशाला आयोजित करी गई। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कही है कि प्राकृतिक और जैविक खेती हमारी पहचान सुई रही है।

0: और जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखे के लाने फिर से जाए अपना न हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रही है। ये अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूक रेरिया युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित करो जा रहा है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न है।
1: बुंदेली समाचार।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और भैयानों, अब हम शुरू करते हैं आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। इस क्रम में जो है पहला गीत हम आपहरों को सुनवा रहे हैं फिल्म उम्मीद से। स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार हैं शकील बदायूं और संगीतकार हैं रवि। जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाइए इरशाद अनवर, सबा परवीन, युसरा अनवर, शरीम, शारिक, सना, शबीना, मुमताज, अर्शिया, मारिया और यूसुफ ने। इके संगे जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाइए घंटाघर चौक खंडवा से। चिट्ठिया आई है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। आप सभी की पसंद पे अपन सब मिलकर सुनाते हैं जो गीत है।

आपके पाती आपके फिल्म गीत को अगलो गीत हमने लव है फिल्म पिया मिलन से। जगीत में स्वरदाव है हेमलता और रत्नेश ने, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार भी रविंद्र जैन है और जगीत की फरमाइश हम तक पहुँचाई है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्णव वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा ने। और जय गीत की फरमाइश जय चिठिया जय गीत के लाने पहुंचाई है, फरमाइश करता है गौरी नगर इंदौर के आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। तो इन सब की फरमाइश पे अपन सुना थे जो गीत।

0: तो भैया आपने जो गीत सुनो फिल्म पिया मिलन से है, तो अगला गीत अब हम आप रोकलाने सुनवा रहे हैं फिल्म निकाह से। स्वर है महेंद्र कपूर को, गीतकार हसन कमाल और संगीतकार रवि। जगत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है भोपाल से इरशाद अनबर, सबा परवीन, युसरा अनबर, शरीम, शारिक, सना, मुस्तकिम, सबीना और इनके साथियों ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश पहुंचाई है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिना। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अपन सुनाते हैं जो गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

और भैया अब जो है आपकी पाती आपके फिल्म गीत क्रम में अगला गीत हम आप को सुना रहे हैं उनकी फिल्म को नाव है बनफूल। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। जय गीत की फरमाइश के लाने चिट्ठिया डारी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर ने। भाटापारा दतरंगी से चिट्ठिया लिखी द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने। जय गीत की फरमाइश के लाने एक और चिट्ठिया हमारे पास है, सपना संगीता रोड इंदौर से चिट्ठिया डारी है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो इन सब श्रोताओं की पसंद पे अपन सब मिलकर सुनते हैं जो गीत।

तो भैया आपने अभी जो बनफूल फिल्म को गीत सुना दो, और अब जो है अगलो गीत आपकी पाती आपके फिल्मी गीत क्रम में हम सुनवावे जा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, स्वर है आशा भोसले का, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। जयगीत केला ने फरमाइश भेजी है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्णव वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। जय गीत की फरमाइश के लाने हमें चिट्ठियाँ भेजी है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पे अपन सभी मिलकर सुनाते हैं फिल्म तीसरी कसम को जो गीत है।

तो भैया रो फिल्म तीसरी कसम को जय गीत के संगे आपकी पाती आपके फिल्मी गीत क्रम जही संपन्न हुए थे। और अब जो है ग्राम सभा भी संपन्न करवे के बिरिया हो रही, मैंने चलत चलत हम आप भरों को बता दें तो जरूर कहना चाहें कि अगर हमारे किसान भाई NHBM यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि महाविद्यालय है या फिर जो कृषि विस्तार अधिकारी है ग्राम सेवक है उनसे जो है NHBM के बारे में चर्चा जरूर करें। कैसे कि जो ऐसी महत्वाकांक्षी मिशन है योजना है इको उद्देश्य वैज्ञानिक तौर पे मधुमक्खी पालन किसान भाइयों को करवाना है और शहद उत्पादन करवे में जो है एक तरह से मीठी क्रांति लाना है जो है केंद्र सरकार की मंशा है। तो हमारे किसान भाई जो है ई मिशन से जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। और अब चलवे के भैया सगई किसान भैया बिन को महेश भैया की राम राम।

ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।

0: श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया। और

0: वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा, और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे,

0: इंसर्जेंट थे उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट थे, बोडोस के इंसर्जेंट थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड

0: देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलैटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या

0: को लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए, मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुँच रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कई जिलों में जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ?

0: आज पाते हैं।
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं, तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें, तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं, तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले, तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है, उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए, तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे। और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG

0: जी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं, और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल, और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं, और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत मदन मोहन का है। मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुनिए चिराग फिल्म का गीत।

तीन देवियां फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:42 होने को है, माफ़ कीजिए, 8:45 होने को है। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण

0: किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की

0: आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन एमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार

0: एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका

0: अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सैटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मेयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था, इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रोकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आज़ादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाएख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौाक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
2: आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुमाल मशरिक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीये। फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाले फीफा विश्व कप 2026 में दुनिया भर की शीर्ष टीमें अपनी प्रतिभा, रणनीति और जुझारूपन का शानदार प्रदर्शन कर रही है। रोमांचक मुकाबलों, अप्रत्याशित परिणामों और खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल ने इस विश्व कप को और भी अधिक दिलचस्प बना दिया है। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फीफा विश्व कप 2026 में टीमों के प्रदर्शन विषय पर यह वार्ता। वार्ताकार है आलोक चतुर्वेदी।

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, इस समय पूरी दुनिया पर फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस खेले जा रहे हैं और ये जो वर्ल्ड कप है फीफा 2026 से कई विशेषताएं लिए हुए है, जैसे कि इस बार तीन देश मिल करके संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं। इसके पहले दो देश मिलकर करते आए हैं, ये पहला अवसर है जबकि तीन देश यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार 48 टीमें खेल रही हैं जबकि इसके पहले 32 देशों से ज़्यादा कभी नहीं खेल पाए थे। और इस बार के वर्ल्ड कप में 104 मुकाबले खेले जाएंगे जबकि पिछले वर्ल्ड कप्स में कभी भी 64 से ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले गए। इसके पहले कोई भी वर्ल्ड कप 39 दिनों तक नहीं चला था। ये विश्व कप 11 जून 2026 से शुरू होकर 19 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा, तो ये सबसे लंबी समय अवधि होगी। इसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी है वो तीन देशों में एक साथ आयोजित की गई, मेक्सिको सिटी में की गई, अमेरिका में लॉस एंजलिस में की गई और कनाडा में मॉन्ट्रियल में की गई। जाहिर है जब 104 मैचेस खेले जाने हैं और 48 टीमें भाग ले रही हैं तो एक खास फॉर्मेट जो है इस प्रतियोगिता के लिए यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए बनाया गया। अब आइए हम इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में एक अभूतपूर्व संख्या आई है टीमों के प्रतिनिधित्व की जो कि 48 है, जैसी हमने बात की। तो इन 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में रखा गया है। आज तक कभी 12 ग्रुप्स नहीं बने और ये 12 ग्रुप्स में चार चार टीमें हैं, लिहाजा लीग जो राउंड है उसमें सब टीमों को तीन तीन मैच खेलने को मिलेंगे। इनमें से हर पूल की टॉप टू टीम्स को नॉकआउट के लिए प्रवेश मिलेगा यानी कि 24 टीमें, और 8 टीमें थर्ड पोजीशन वाली जो बेस्ट हैं उनमें से चुनेंगे। तो जो नेक्स्ट राउंड होगा नॉकआउट राउंड का उसमें 32 टीमें होंगी और वो टीमें नॉकआउट खेलेंगी और टीमें फिर बाहर भी होती जाएंगी जो कि हारेंगी। तो इस तरह से 16 टीमें बचेंगी। तो जो 16 टीमें हैं उनका जो प्री क्वार्टर फाइनल दौर है यानी कि 8 मैचेस उनके होंगे और उसके बाद क्वार्टर फाइनल 4 होंगे यानी 8 टीमें बचेंगी। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से टीमें कम होती जाएंगी। फिर फाइनली सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें, फाइनल के लिए 2, और एक मैच जो 104 नंबर का होगा वो तीसरी पोजीशन के लिए खेला जाता है फीफा वर्ल्ड कप में परंपरागत रूप से, जैसे पिछली बार तीसरे स्थान पर क्रोएशिया आई थी मोरक्को को हराकर। फिर 19 जुलाई को जो है मेटलाइफ स्टेडियम जो कि न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में है उसमें फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब एक नज़र हम जो 48 देश हैं वो किस किस महाद्वीप से हैं उसका ब्रेकअप ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा 16 टीमें यूरोप से हैं, 10 टीमें अफ्रीका से हैं, एशिया से अच्छा प्रतिनिधित्व है, 8 टीमें हैं और 2 टीमें पहली बार इन्होंने प्रवेश पाया है, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। इसके बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिका की 6-6 टीमें हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वहाँ से 2 टीमें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। इस तरह से कुल मिलाकर 48 टीमों का ये ब्रेकअप था। थोड़ी सी हैरानी की बात है वो ये है कि इटली की टीम जिसने कि 4 बार विश्व कप पे अधिकार जमाया है 1934 से लेकर, वो टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है। अगर हम किसी भी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता की बात करते हैं तो कुछ की प्लेयर्स, कुछ मुख्य खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल प्रेमियों की नज़र उनके प्रदर्शन पर होती है क्योंकि उनके प्रदर्शन से उनकी टीम के प्रदर्शन पे कई बार बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि जो एम्बापे हैं फ्रांस के खिलाड़ी वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, फाइनल तक ले गए टीम को और टाई ब्रेकर तक मैच गया, उसमें उनकी हैट्रिक भी थी, फ्रांस के जीतने का भी चांस हो रहा था बाद की स्टेजेस में, टाई ब्रेकर में वो हार गए। इसी तरह लियोनेल मेसी जो हैं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी 6ठा विश्व कप खेल रहे हैं और इस बार 2 खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से हैं वो और लियोनेल मेसी ये रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके पहले कोई भी खिलाड़ी 6 विश्व कप में नहीं खेला था। तो मेसी मुख्य खिलाड़ी होंगे।

उन्होंने अपनी दस्तक दे भी दी है, उन्होंने पहले ही मैच में हैट्रिक बनाई और 3-0 से ये जीते। एम्बापे का प्रदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैंने बात की, इसके अलावा यमाल एक प्लेयर हैं स्पेन, एक नेमार हैं ब्राज़ील के, कुछ की प्लेयर्स हैं जिनका जो प्रदर्शन है वो बहुत मायने रखेगा उनकी टीम की सफलता के लिए। अब मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा कि जो अब तक 22 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें किस तरह से विजेता हुए हैं। 1930 में जो पहला ये यूरुग्वे में ही खेला गया फीफा वर्ल्ड कप, इसमें यूरुग्वे जीता, 1934 इटली, 1938 इटली, 1942 1946 सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, 1950 यूरुग्वे, 1954 जर्मनी, 1958 ब्राज़ील, 1962 फिर से ब्राज़ील, 1966 इंग्लैंड, 1970 ब्राज़ील, 1974 जर्मनी, 1978 अर्जेंटीना, 1982 इटली, 1986 अर्जेंटीना, 1990 जर्मनी, 1994 में ब्राज़ील, 1998 में फ्रांस, 2002 में फिर से ब्राज़ील, 2006 में इटली, 2010 में स्पेन, 2014 में जर्मनी, 2018 में फ्रांस और पिछला विश्व कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता। तो 2022 के 22वें संस्करण तक जो 80 टीमें खेली विभिन्न विश्व कपों में, उसमें सिर्फ 10% टीमें ही यानी 8 टीमें ही कप पे अधिकार जमा पाईं, और ये टीमें या तो यूरोप महाद्वीप से थीं या फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से थीं। इससे पता पड़ता है कि फुटबॉल का विश्व कप जीतना कितनी बड़ी बात है। ब्राज़ील की टीम एकमात्र टीम है जिसने सारे विश्व कप में जिसको भाग लेने को मिला है, बाकी कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने कि सारे विश्व कप में भाग लिया हो। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा 5 बार जीता है, जर्मनी और इटली 4-4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, यूरुग्वे 2 बार, इंग्लैंड 1 बार, स्पेन 1 बार। इस तरह से ये कुल 22 विश्व कप का जोड़ बन जाता है। इस बार स्पेन, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, इन टीमों को फेवरेट माना जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है 19 जुलाई को, क्या हमें कोई नया देश विजेता मिलता है नवे विजेता के रूप में, ये समय ही बताएगा। फिलहाल जो फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है जो कि 11 जून को शुरू हुआ था, उसका जो लीग राउंड है 72 मैचों का वो जारी है। हर दिन 4 से 5 मैच खेले जा रहे हैं ताकि 28 जून तक जो 72 लीग मैचेस हैं वो पूरे कर लिए जाएं। आमतौर पर काफ़ी सारे मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं। अब अगर श्रोताओं, हम जो वर्तमान फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है उसमें 18 जून तक जो मैच खेले जा चुके हैं उसमें जो 12 ग्रुप हैं उनमें टीमों की स्थिति की बात करें तो ग्रुप ए में मेक्सिको 6 अंक लेकर शीर्ष पर है। यहाँ ये ख्याल रहे कि मैच जीतने पर 3 अंक मिलते हैं, इसका मतलब उन्होंने दोनों मैच जीत लिए, और मैच ड्रॉ होने पर 1 अंक मिलता है। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो वहाँ पर कनाडा और स्विट्ज़रलैंड हैं, उनके पॉइंट्स बराबर हैं ग्रुप बी में, और ग्रुप सी में जो स्कॉटलैंड है वो शीर्ष पर है, उसके 3 पॉइंट हैं। ग्रुप डी में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इनके 3-3 पॉइंट्स हैं, ये टॉप पर हैं। ग्रुप ई में जर्मनी टॉप पर है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। ग्रुप एफ में स्वीडन टॉप पर है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। ग्रुप जी और एच में बड़ी रोचक स्थिति बनी हुई है, जैसा मैंने बताया कि एक दिन 4 मैच लगातार ड्रॉ हुए तो वो मैच इन दोनों पूलों से ही थे, तो यहाँ पर सभी टीमों को 1-1 अंक मिला है। और ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि कोई भी टीम ज़्यादा पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाई है। उसके बाद जो ग्रुप आई है उसमें नॉर्वे सबसे ऊपर चल रही है, उसके बाद जे में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ये 3-3 अंक लेकर इन्होंने 1-1 मैच ही खेला है, सबसे ऊपर हैं। ग्रुप के में कोलंबिया सबसे ऊपर है, 3 अंक हैं उसके। और जो आखिरी 12वां ग्रुप है ग्रुप एल, उसमें इंग्लैंड और घाना दोनों ने 1-1 मैच ही खेला और जीते हैं, लिहाजा दोनों के पॉइंट्स 3-3 हैं। तो आगे चलकर जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे ये स्थिति और रोचक बनेगी, और हम देखते हैं कि 19 जुलाई को हमें कौन सा चैंपियन देखने को मिलता है। इस दौरान हाई स्कोरिंग मैचेस बहुत
कम देखे गए।

लेकिन जो मैच अभी हाल में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त था। 4 गोल इंग्लैंड ने किए और 2 क्रोएशिया ने। हाफ टाइम तक 2-2 की बराबरी थी और अपने नए जर्मन कोच के साथ खेल रही इंग्लैंड टीम हाफ टाइम के बाद एक नए जोश और एग्रेशन के साथ नजर आई। उन्होंने 2 गोल करके मैच 4-2 से जीत लिया। इंग्लैंड की जो ये परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त मानी जा रही है अपने नए जर्मन कोच के साथ, और जो इंग्लैंड का प्रदर्शन भी चल रहा है इसलिए उसको भी वन ऑफ द फेवरेट्स माना जा रहा है। वो उन 8 टीमों में है जो एक बार विश्व कप जीत चुकी है। ये मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ। एक मैच और था जिसमें कि मैसी ने, जो कि 6ठा विश्व कप खेल रहे हैं रिकॉर्ड, और 38 वर्ष से ज़्यादा उनकी उम्र है और वो पिछले वर्ल्ड कप के भी हीरो थे, उन्होंने हैट्रिक बना ली और अल्जीरिया के खिलाफ जो अर्जेंटीना की टीम है वो एक बड़े इम्प्रेसिव 3-0 के मार्जिन से वो जीती। अब देखना ये होगा कि जिस तरह का उत्साह फुटबॉल प्रेमियों में पूरे विश्व में देखा जा रहा है और जो एक उत्सुकता देखी जा रही है वो लाजवाब है। और ये भी मानने वाली बात है कि जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो सबसे बड़ी संख्या में इस बार अमरीका, कैनेडा और मैक्सिको पहुँचे हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए। अकेले इंग्लैंड से ही 30,000 जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो नॉर्थ अमेरिका पहुँचे हैं ये वर्ल्ड कप देखने के लिए। इंग्लैंड की जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसका स्तर वही है जो कि क्रिकेट में भारत की IPL का है। इंग्लिश प्रीमियर लीग आज भी सबसे बड़ी और पॉपुलर लीग मानी जाती है, और यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम भले ही एक ही बार वर्ल्ड कप जीत पाई है पर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स रही है और अक्सर वो तीसरा स्थान या फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में बराबर पहुंचती आ रही है। तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी फुटबॉल हमको पूरे अगले 1 महीने देखने को मिलेगी और ये जो है उत्सुकता बनी रहेगी कि जब फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा न्यू जर्सी में तो उसमें कौन चैम्पियन बनता है। धन्यवाद।

0: अभी आपने फीफा विश्व कप 2026 में टीमों के प्रदर्शन विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे आलोक चतुर्वेदी। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत इज्जत फिल्म से लिया है, जिसे आवाज़ दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सूरज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया आंधी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुलजार के बोलों को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाए आंधी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो।

0: ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
1: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
0: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई

0: गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन अब ये झील

0: प्रदूषण असिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है, गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की
2: एक
1: बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज तो मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ गई।
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचते।

कूदने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या,
वो तो पूरा राक्षस।

था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाया।

जमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं। पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

तापमान हम बढ़ाते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए सारंग फगरे का राग बागेश्री में ख्याल गायन। तबले पर संगत की है अशेष उपाध्याय ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे सारंग फगरे का राग बागेश्री में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी आशीष उपाध्याय ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली

0: पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों

0: तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Drairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure